FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक सम्मत 248 की आश्विन मास की 8वीं तिथि तदनुसार 30 सितंबर सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफ एम 103 मेगाहर्ट्ज़ पे। आए सुनते हैं खेती की बातें। जीव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व, संकलन वाचन प्रतिमा वर्मा की है।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइलम, फास्फेट और पोटाश, घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फास्फेट, घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को तीन प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15 से 20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाए जाने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचा कर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पति वियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

पराधीन सपने हो सुख नहीं। तुलसीदास जी का कहना है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं होता है उसे स्वजनों से कभी भी सुख नहीं मिलता है। हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह होता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए यह सब व्यर्थ होता है। पराधीनता एक मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होते हैं। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो अक्षम होते ही हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाहीं, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए बना ही नहीं है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ता है तो वो स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। सोने के पिंजरे में रहकर उसे व्यंजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते। वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल फूल खाने से सुख का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबोरी भी मीठी लगती है। पक्षी को सोने के पिंजरे में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वह स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यह विडंबना होती है कि वह अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पीछे हटना चाहिए। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। प्रकृति का कण कण स्वतंत्र होता है। प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। जब जब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अच्छी सजा देती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम प्रदूषण, भूकंप, भूक्षरण, बाढ़ें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। जब हम दो फूलों की तुलना करते हैं, एक तो वन में लगा होता है जो प्रकृति को सुंदरता और सुगंध प्रदान करता है, और दूसरा फूलदान में लगा होता है जो मुरझा जाता है। जो फूल उपवन में होता है खुशी से झूमता है, लेकिन जो फूलदान में लगता है वह केवल अपनी किस्मत पर रोता है। सर्कस के पशु पक्षी अगर बोल पाते तो उनसे हमें पराधीनता के कष्टों का पता चलता। वे बेचारे अपने दुखों को बोलकर भी प्रकट नहीं कर पाते। हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है वह पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं वे कभी भी
पराधीनता से पराजित नहीं हो सकते। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाहीं।

से सुन रहे थे चिंतन पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। ये आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आई सुनते हैं आराधना हरिहरन।

आराधना हरिहरन सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता मधुमेह से बचाव। भेंटवार्ता करें डॉक्टर विजय कुमार सिंह रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार।

0: रोगियों की संख्या में। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब से। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। मधुमेह होने का जो सबसे प्रमुख कारण जो है, मूल कारण है, वो क्या है?
1: मधुमेह, जैसा कि आपने अभी प्रस्तावना में ही कहा कि मधुमेह जो है आज पूरे दुनिया में अधिकांश लोगों को अपने घेरे में लेते जा रहा। मोटे तौर पर मधुमेह को दो भाग में बांटा जाता है, दो ग्रुप है, जिसमें एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं टाइप वन और दूसरा ग्रुप है टाइप टू। तो थोड़ा सा हम उसमें करेंगे कि दोनों का चूंकि कारण अलग अलग है। तो टाइप वन जो डायबिटीज है वो कम उम्र के लोग, बच्चों में होता है, बच्चों से लेकर वयस्क लोगों में होता है, और ये बीमारी जो है से बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दोनों ग्रुप में अगर कहा जाए तो टाइप वन बहुत ही खतरनाक है, इसमें जान चले जाने की संभावना रहती है। तो इसका अगर मुख्य कारण कहेंगे टाइप वन का, तो वो एक ये ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटो इम्यून नेचर का होता है, कि कुछ कारण से कुछ वायरस वगैरह जो है वो जाता है, जिससे कि बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में काम करने लगता है, उसे पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन बनता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसमें है कि बच्चा जिसमें होता है, जिस उम्र में 5-7 साल के बच्चों में शुरू होता है, तो उससे होता है कि बच्चा जो है सो उसको बार बार पेशाब होना, बहुत भूख लगना, बहुत पेशाब प्यास लगना, और शरीर जो है सो बिल्कुल दुबला होते चला जाता है। और उसके बाद अगर इसको भी नहीं समझा गया, अगर उसमें इलाज नहीं हुआ उसका डर, तो बच्चा जो है सो बेहोश हो सकता है। उसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसे बेहोशी हो सकती है और उसका जान भी जा सकता है। दोनों टाइप में अगर हम कहें तो टाइप वन बहुत ही खतरनाक बीमारी है,
0: ये छोटे बच्चों में,
1: छोटे
0: होता है।
1: बच्चों में और कम उम्र के लोगों में होती है। और दूसरा जो सबसे जो आज इस जिस समस्या का आपने जिक्र किया वो टाइप टू डायबिटीज है, खास उम्र के ऊपर के लोगों को होता है, 35-40 से शुरू हो जाता है। इसमें अधिकांश लोग जो है इसमें जेनेटिक अनुवांशिक होता है, इसमें आपको कोई मदर फादर दोनों में से एक या दोनों, उनमें हिस्ट्री जरूर रहता है कि दोनों में से एक को है या दोनों में से दो को है, दोनों को है। तो इस तरह से ये अनुवांशिक बीमारी एक तरह से है, लेकिन सिर्फ अनुवांशिक से ही नहीं है, इसका दूसरे कारण में है कि और भी कारण है, जैसे मोटापा है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ का, और ख़ास करके बड़े जो औद्योगिक देश हैं, जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके साथ साथ डायबिटीज़ भी उसी तरह से बढ़ गया जिस तरह से मोटापा बढ़ा। अनुवांशिक जो कारण है उसके साथ जो वातावरण का कारण है, दोनों में जब इंटरेक्शन होता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों खतरनाक है, इसलिए कि इसको हम कहेंगे कि समझने के लिए कि एक मीठा जहर है। डायबिटीज़ का मतलब ही होता है कि जो पेशाब में बहुत मात्रा में शक्कर का जाना, शुगर का जाना। तो इसमें होता है कि क्या इससे खतरा क्या हो सकता है, डायबिटीज़ से खतरा हो सकता है। पहले तो हम लोग कारण जाने, तो कारण में जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उसमें बहुत पेशाब होना, बहुत प्यास लगना, बार बार जो है सो जाना बाथरूम, बहुत भूख लगना, और सबसे आश्चर्य की बात है कि इतना कुछ भूख लगने के बाद वो जो पेशेंट मरीज है खाना भी खूब खाता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य गिरते चला जाता है, उसका वेट गिरते चला जाता है और कमजोरी बढ़ती चली जाती है। तो अगर इस सिस्टम में किसी को इस तरह के लक्षण होते हैं तो तुरंत उसको जो है शोध होना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सिम्टम्स है जो हो सकता है। एक तो होता है कि पेशेंट को जो है सो बिल्कुल वेट घटने लगा, उसको सब कुछ नहीं हो रहा, पेशाब नहीं हो रहा, ज़्यादा ही नहीं हो रहा, वेट घट। दूसरा होता है कि बार बार इन्फेक्शन होने लगा, स्किन में इन्फेक्शन, घाव हो जा रहा है, एब्सेस हो जा रहा है। लेडीज़ में देखा जाता है बार बार उनको लिकोरिया की शिकायत हो जा रही है। प्रेग्नेंट औरत हैं तो उनका बच्चा जो होता है नॉर्मल तो 2.5 kg, 3 kg का बच्चा होना चाहिए, वो जो है 5 kg का बच्चा होता है। तो उस तरह का भी लक्षण है जिसे कि आप जो है सो पता कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसा लक्षण है कि पहले से किसी को हम नहीं जानते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन वो हार्ट अटैक लेके चला आता, तो हार्ट अटैक लेके चला आता, जब उसको जांच करते हैं तो पता चलता है कि तो डायबिटीज़ भी इनको, इनको पता भी नहीं था इसके बारे में। तो आज के तारीख में ये सबसे गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा हेल्थ स्वास्थ्य समस्या है, सरकार के सामने भी, हम लोग के सामने भी।
0: इसका जो रेंज है वो रेंज कितना निर्धारित किया हुआ है आज की जीवन शैली की हम बात करें?
1: उसका जो है दो तरह से उसको देखते हैं हम लोग, डायग्नोसिस जो किया जाता है। एक तो जो है सो बिल्कुल 12 घंटे के फास्टिंग के बाद, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है, खाली पेट में ले, तो उसका जो है सो 60 से लेकर 100 तक नॉर्मली होना चाहिए सामान्य रूप से, और 100 से लेकर 125 तक अगर आता है तो उसको बोलते हैं हमको कि ये जो है सो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोला जाता है,

कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 35 करोड़ से भी अधिक लोग आज मधुमेह के शिकार हैं। इनमें से करीब 6.5 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं, और भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है मधुमेह।

0: फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ होने की संभावना उसको, और अगर 125 से ऊपर चला जाता है फास्टिंग में तो उसको जो है सो हम लोग कहते हैं कि यह डायबिटिक है। उसी तरह से अगर खाना खाने के बाद 140 या 160 से ऊपर चला जाता है तो उसको जो है, या कोई भी का सैंपल अगर 200 से ऊपर है तब तो बिल्कुल ही डायबिटिक हुआ जी। तो इसीलिए दोनों किया जाता है। किसी किसी केस में हम लोगों को जो है सो और भी फ्रीक्वेंट करना पड़ता है जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, किसी किसी केस में हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आमतौर पर फास्टिंग खाली पेट में और खाने के बाद किसी को जो टेस्ट करते हैं, इसका मानक पर दिया हुआ है इसके अनुसार डायग्नोसिस उसका
1: जी। एक बार डायग्नोस हो जाता है कि व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो गया तो वो किस प्रकार अपने जीवन शैली में सुधार करे, खान पान किस प्रकार ले, और निरंतर दवाइयों का सेवन इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है?
0: इसको हम दो तरह से बांटेंगे कि पहला चीज़ तो हुआ कि बिना दवा का कैसे उसको क्या करना है उसमें, तो दवा के अलावा भी बहुत कुछ से डायबिटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको कम जिनका बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो उसमें एक तो है कि वेट के बारे में, उनका आइडियल वेट होना चाहिए उम्र के मुताबिक, उम्र के लिहाज से या उनके देखिए हाइट के मुताबिक उनके जो है सो आइडियल आदर्श जो है सो उनका वजन रखना है। कैसे रखेंगे तो उसके रखने के लिए है कि दो चीज़ ज़रूरी है, एक तो है कि आप शारीरिक मेहनत करें, वो जिनकी जीवन शैली में काफ़ी जो है सो सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं जिनमें ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं है, उनको भी करना होगा कि आजकल तो नया रिकमेंडेशन में यही है कि कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से भी आप टहलते हैं और सप्ताह में 5 दिन भी टहलते हैं तो उसको एडिक्वेट माना जाता। तो एक तो ये हुआ कि जिसमें आपको वजन को कंट्रोल करना है, वेट को कंट्रोल करना है, कि वेट बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। दूसरा है कि जैसे डाइट में जो आप हम डाइट जो लेते हैं उसमें फैट का क्वांटिटी जरूर कम होना चाहिए, वो दोनों में मदद करेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में भी और साथ साथ आपका जो है सो इसमें वजन को भी नहीं बढ़ने देता है। तो ये दो चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ कि आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइट का कंटेंट क्या है, तो डाइट कंटेंट में है कि कितना कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, रोटी चावल कितना ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, उसका जो है से उसमें एक अनुपात बनाया गया है जिसके अनुसार ऐसे कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते ही हैं, 40-50% हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही लेते हैं, उसके बाद 20-30% जो है से प्रोटीन के लिए लेते हैं, जिसमें प्रोटीन लेते हैं, दूसरा तीसरा फैट जो है उसमें 10-20% फैट भी रहना चाहिए, उसके अलावा भी जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उसको भी मिलना चाहिए। तो पहला जो हमारा जो स्टेप है वो है कि उनका नॉन ड्रग ट्रीटमेंट जिसमें कि उनका वजन पर कंट्रोल करना, उनका डाइट में क्या खाएं क्या नहीं खाएं उस पर ध्यान रखना, ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब अगर आवे इलाज के ऊपर ड्रग ट्रीटमेंट में, तो आजकल चिकित्सकों के सामने बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि दवाइयों को यूज़ किया जा सकता है, जिसका सब जितनी भी दवाइयाँ हैं खाने वाली उस सब का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो पेशेंट है उस पर कौन सा दवा उसके लिए एडिक्वेट होगा, वो डॉक्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तीसरा जो हुआ सो इंसुलिन के बारे में सुनते होंगे कि किस लोग इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन तो इसके बारे में यही कहना है कि जो डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन का ही डिस्टर्बेंस रहता है।
2: अभी आप सुन रहे थे मधुमेह कारण एवं बचाओ, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां साहब सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश भरत भारती की आवाज़ में। गुलाम अली की आवाज़ में आप सुनेंगे स्वर सरिता 7:45 पर। 8:00 का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:40 पर आप सुनेंगे विज्ञापन रांची से। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। जोहर पलामू का समय होगा 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हिंदी में। समाचार का समय होगा 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। 10:10 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 11:00 रंग तरंग।

बजे याद हो कि महफिल 1 बजे का समय होगा। दिल्ली से हिंदी में समाचार का, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर, 1:10 पर हम चलेंगे रांची जहाँ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 1:20 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफ़र। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 2 बजे जो आप दिल्ली या मुंबई से सुनेंगे, 2:15 पर हम चलेंगे दिल्ली जहाँ से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में, 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नगर में प्रादेशिक समाचार का समय होगा, 2:55 पर रांची से, 3 बजे आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सखी सहेली, 4 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के मेहमान, 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का रांची से, 5:02 पर हम चलेंगे मुंबई जहाँ से आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत।

शाम 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 5:35 आप सुनेंगे घर आंगन महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00, 6:02 आप सुनेंगे खेती बाड़ी, ग्रामीण सभा का समय होगा 6:30 पर, 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से, 7:10 आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल, 7:15 आप सुनेंगे एक रंग कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता दांतों की आम समस्या एवं देखभाल, भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर अब्दुल जफर रांची से और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार लाल, समय होगा रात के 7:45 पर, रात के 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत, 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9:00 का समय होगा दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार का, 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार, 10:00 का समय होगा दिल्ली से स्पेशल प्रोग्राम का, 10:20 आप सुनेंगे रजनीगंधा, 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार दिल्ली से, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात के 11:10 पर। ये थी हमारी आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को

0: दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल

0: के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक सवनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सवनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
0: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सवनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
2: सवनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
0: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण 21

0: रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defense Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi, Mr.

0: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति दर्ज कराने और अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने और मॉडल डिजिटल हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए आज से 2 दिवसीय डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव हो रहा शुरू। झारखंड हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में बिजली के खंभों में उलझे तारों के मामले में राज्य सरकार और विभाग की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। जल्द SOP तैयार करने का दिया निर्देश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85 वर्ष पूरे। सैम्फर धनबाद में विकसित भारत 2047 पर हुआ मंथन। पर्यावरण, समाज और सुशासन के संतुलन पर दिया गया जोर। और हरियाणा के मधुबन में आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस ने बॉडी बिल्डिंग में जीते 2 पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति दर्ज कराने और विवरण संशोधन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। हालांकि दावा आपत्ति की सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है। यदि आयोग से स्वीकृति मिलती है तो पूर्व से तय 19 अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी दिसंबर तक किया जा सकता है। इधर धनबाद में SIR के तहत फॉर्म में सुधार को लेकर माड़ा कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि घुसपैठियों का साथ देने वाली राजनीतिक दल SIR और MMDR का विरोध कर रहे हैं। श्री साहू ने कल सिमडेगा में पत्रकारों से कहा कि SIR घुसपैठिए मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया है, वहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण MMDR का विरोध किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार MMDR के माध्यम से पूरे देश में एक रूपता लाना चाहती है।
1: MMDR कानून जब केंद्र सरकार ने बनाया, उस कानून में क्या है कि पूरे देश में एक प्रणाली हो, उसका भी विरोध किए, अब SIR का विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि जब इनकी सरकार थी तो कुछ गलत हथकंडा अपना करके बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने का काम किए थे, मतदाता बनाने का काम। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि देश के लोगों को इस प्रकार से दिग्भ्रमित करके लोगों को गुमराह करना चाहते।
0: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ने और एक मॉडल डिजिटल हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए राज्य सरकार आज से 2 दिवसीय डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कॉन्क्लेव और झारखंड के डिजिटल हेल्थ रोडमैप की जानकारी दी।
2: इस कॉन्क्लेव में हेल्थ पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप भी होगा, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होता है वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। हमारा जो उद्देश्य है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मरीज केंद्रित बनाना है, ताकि झारखंड के हर नागरिक को समय और गुणवत्ता पूर्वक सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हमारा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली हेल्थ केयर के साथ झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई दिशा हम लोग दे सके।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली के खंभों पर बेतरतीब ढंग से उलझे तारों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने तारों के व्यवस्थित प्रबंधन को लेकर SOP जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पर्यटन विभाग के सचिव और जिले के उपायुक्त को 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप गठन की कार्यवाही रोकने और ED कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

0: समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कल रांची में एसीपी, एमएसीपी और मालखाना से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अगले एक साल में सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के एसीपी, एमएसीपी मामलों, आरक्षी से हवलदार और एसआई तक प्रोन्नति के लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही 15 दिनों में 50% रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर विस्तृत सूची मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया। सीएसआईआर के 85 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल धनबाद में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डीजीएमएस के महानिदेशक रविंद्र टी मांडिककर ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्यावरण, समाज और शासन में संतुलित और समान विकास जरूरी है।
1: साल का जो डेटाबेस है आप उससे देखेंगे, आप कंसिडरेबल रिडक्शन इन कोल माइनिंग भी हुआ है और मेटलिफेरस माइंस में भी हुआ है और ऑयल माइंस में भी हुआ है। और हमारा जो लक्ष्य है यहाँ रुकने का नहीं है, हमारा लक्ष्य शून्य क्षति, विकसित भारत के साथ ये भी सपना है कि हम शून्य क्षति भी अचीव करें। तो उसके साथ साथ सारे डायरेक्शन में सिंफर, डीजीएमएस, इंडस्ट्री, सभी स्टेक होल्डर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
0: गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि मांदर को जीआई टैग मिलने की ऐतिहासिक उपलब्धि से राज्य की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा। इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और बड़े बाजारों के नए आर्थिक अवसर भी पैदा कर।
2: ये मांगर का जो जीआई टैग मिल गया है ये पिछले 5 दशकों से प्रयासरत है हम लोग को कि इसको जीआई टैग मिल जाए और यहीं जाके लोगों को सफलता मिली है। इससे हमारे पूरे झारखंड में, पूरे देश में भी हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र और पारंपरिक सांस्कृतिक के क्षेत्र में का बहुत लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र के जनजातीय लोगों के साथ साथ पूरे देश भर में इसका पहचान बनेगा।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में अगले 3-4 दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा या मेघगर्जन की संभावना जताई है। हरियाणा के मधुबन में आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस ने बॉडी बिल्डिंग में 2 पदक जीते। रांची औद्योगिक सुरक्षा बल के हवलदार संतोष कुमार बोबोंगा ने 56 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं आरक्षी बीरेंद्र बोदरा ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। इधर झारखंड पुलिस रांची के होटवार स्थित खेलगांव परिसर में 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है। यह प्रतियोगिता 22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने एशियन गेम्स में कल 2 स्वर्ण पदक मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, दवाओं के वसूले जा रहे 10 गुना दाम, निजी अस्पताल बन रहे उद्योग, यह लूट। दैनिक जागरण ने लिखा है, 10 गुना दाम पर कैंसर दवा बेचना नरसंहार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एसआईआर के तहत एएसडीडी मतदाताओं की आपत्तियों पर सुनवाई की तिथि बढ़ेगी। हिंदुस्तान ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की सहमति की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति दर्ज कराने और अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने और मॉडल डिजिटल हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए आज से 2 दिवसीय डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव हो रहा शुरू। झारखंड हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में बिजली के खंभों में उलझे तारों के मामले में राज्य सरकार और विभाग की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, जल्द एसओपी तैयार करने का दिया निर्देश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के तहत 85 वर्ष पूरे सिंफर धनबाद में विकसित भारत 2047 पर हुआ मंथन, पर्यावरण, समाज और सुशासन के संतुलन पर दिया गया जोर। और हरियाणा के मधुबन में आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस ने बॉडी बिल्डिंग में जीते 2 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अरे रंजू बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
4: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
3: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
4: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
3: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
4: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
3: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
4: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।

0: हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी के इस गाने से, जिसे गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी ने, गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गीत गुंजन आकाशवाणी के डार्जिलिंग केंद्र से कार्यक्रम के अंत में ये हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नसीब का ये गाना।

और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुरानी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक बातें 23 दिसंबर के इतिहास में। तो 23 सितंबर के इतिहास में देश और दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाएं, और हम जन्म और निधन के बारे में बताएंगे कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे 1803 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने असहाय के युद्ध में मराठा सेना को हराया था।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 30 सितंबर का जो दिन इतिहास है, हम उसकी बातें करेंगे। वो गलती से 23 सितंबर हो गया था। 30 सितंबर का दिन इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं के लिहाज से बहुत ही अहम है आज का दिन। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को ही मनाया जाता है। 30 सितंबर 1687 को मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब्जा किया था। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। 30 सितंबर 1943 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आए भयानक भूकंप से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार गुलामों, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, स्वच्छता क्यों जरूरी। वार्ताकार है कुमारी सपना। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: स्वच्छता से नाता जोड़ो, गंदगी को हमेशा के लिए दूर छोड़ो। स्वच्छता से नाता जोड़ो, गंदगी को हमेशा के लिए दूर छोड़ो। हमारे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए स्वच्छता अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। स्वच्छता के अभाव में खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती है। गंदगी से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। गंदगी व कचरे का पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः मानव जीवन के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता का अर्थ सफाई से रहने की आदत से है। खुद को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए हम जो करते हैं, वो सब व्यक्तिगत

स्वच्छता के अंतर्गत आता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आखिर व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? बीमारियों से बचाव। नियमित रूप से हाथ धोने और नहाने से हानिकारक कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस खत्म होते हैं, जिससे सर्दी, फ्लू और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित स्नान और शरीर की देखरेख से पसीना, गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाएं दूर होती है, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है। स्वच्छ वातावरण से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इससे तनाव कम होता है और कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मानसिक शांति। साफ सुथरे और व्यवस्थित वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है, जिससे सकारात्मक सोच बढ़ती है और समाज में अच्छा माहौल बनता है। व्यवस्थित माहौल दिमाग को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। स्वच्छ और सुव्यवस्थित रहने से व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और सामाजिक मेलजोल बेहतर होता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहते हैं, तो यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमारी सोच को भी बदलता है। पर्यावरण की सुरक्षा। कचड़े और मल मूत्र के सुरक्षित निस्तारण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और बीमारियां फैलाने वाले कीट पैदा नहीं होते। स्वच्छता कचरे के सही प्रबंधन और प्रदूषण को रोककर पर्यावरण की सुरक्षा करती है। मौखिक स्वास्थ्य। दिन में 2 बार ब्रश करने और सफाई रखने से दांतों में सड़न, कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और मुंह की बदबू से बचाव होता है। सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता में व्यक्ति के संबंधों में सभ्यता, सहानुभूति, ईमानदारी और सभ्य व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। स्वच्छता व्यक्ति के विकास में मदद करती है, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती है और सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर उच्चतम स्तर के चरित्र और गुणों का निर्माण करती है। यह व्यक्ति के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता के महत्व। स्वच्छता का महत्व आखिर क्या है? स्वस्थ रहने का माध्यम। स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यह बीमारियों के प्रसार को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। सामाजिक रूप से और भविष्य के लिए फायदेमंद। स्वच्छता सामाजिक रूप से और भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। स्वच्छता के माध्यम से समाज में सभ्यता और संगठन की भावना पैदा होती है। पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छता से हम पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकते हैं। साफ सुथरा वातावरण हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है। स्वच्छता के नियम क्या हैं? हाथ धोना। खाने से पहले, खाना बनाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद हमेशा साबुन और पानी से कम 20 से 30 सेकेंड हाथ धोएं। दैनिक स्नान। कीटाणुओं और पसीनों से मुक्त रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दांतों की सफाई। मुंह के संक्रमण और दांतों की सड़न से बचने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें। नाखून काटना। बैक्टीरिया और गंदगी को इकट्ठा होने से रोकने के लिए समय समय पर नाखून काटें। साफ कपड़े। त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा धुले हुए और स्वच्छ कपड़ा पहनें। खान पान और रसोई की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ढका हुआ भोजन। हमेशा ताजा और ढका हुआ भोजन ही खाएं, ताकि मक्खियों और धूल

मिट्टी से बचा जा सके। रसोई की सफाई, रसोई के काउंटर टॉप, चूल्हा और बर्तनों को साफ रखें। पर्यावरण और आसपास की स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच से बचें और शौचालय का प्रयोग करें। कचरा प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे को कूड़ेदान में ही डालें। आसपास की सफाई, घर के आसपास पानी जमा न होने दें और वातावरण को स्वच्छ रखें ताकि बीमारियां ना फैले। स्वच्छता के नियमों का पालन करने से हम स्वस्थ, संगठित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और सामाजिक स्वच्छता का योगदान भी कर सकते हैं। इससे हम खुद को, अपने परिवार को और समाज को फायदा पहुंचाते हैं। स्वच्छता की शुरुआत किसी दूसरे के घर से नहीं बल्कि खुद के आंगन से होती है। अगर हम आज अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक बीमार भविष्य मिलेगा। चलो आज मिलकर एक वादा करें, अपने देश को साफ रखेंगे, अपनी धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रकार स्वच्छता का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता हमारे जीवन पर सीधा और गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती है जो शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति तक फैली हुई है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, बीमारियों से बचाव। साफ सफाई रखने से बैक्टीरिया और वायरस नहीं फैलते जिससे डायरिया और संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। शारीरिक तंदुरुस्ती, नियमित नहाना और हाथ धोना जैसी आदतें शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव में कमी। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मन को प्रसन्न रखता है और मानसिक थकान व चिंता को दूर करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। साफ सुथरा रहने और रहने की जगह को स्वच्छ रखने से आत्मविश्वास और खुद के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ती है। सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव, सभ्य समाज का निर्माण। स्वच्छ आदतें समाज में अच्छे आचरण और अनुशासन का संदेश देती है। पर्यावरण की रक्षा, कचरे का सही प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाता है जो शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति तक फैली हुई है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, बीमारियों से बचाव। साफ सफाई रखने से बैक्टीरिया और वायरस नहीं फैलते जिससे डायरिया और संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। शारीरिक तंदुरुस्ती, नियमित नहाना और हाथ धोना जैसी आदतें शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव में कमी। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मन को प्रसन्न रखता है और मानसिक थकान व चिंता को दूर करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। साफ सुथरा रहने और रहने की जगह को स्वच्छ रखने से आत्मविश्वास और खुद के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ती है। सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव, सभ्य समाज का निर्माण। स्वच्छ आदतें समाज में अच्छे आचरण और अनुशासन का संदेश देती है। पर्यावरण की रक्षा, कचरे का सही प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।

ही जाते हैं, मगर कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर पर काफ़ी असरदार होते हैं और वो काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। काफ़ी कम दाम में भी उनके पौधे मिल जाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम अपने घर में भी लगाएं और प्रतिदिन इनके समय में जो फल प्राप्त हो तो उसे खाने से हमें शरीर में कई फायदे मिलेंगे। और उसी फल में है हमारा पपीता का पेड़। जी हाँ, ये एक ऐसा पेड़ है जो हम अपने घरों में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। पपीता से हमें बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें पाचन में सुधार करने की कैपेसिटी होती है। पपीते में प्रोटीन पाया जाता है जो एंजाइम होता है और जो भोजन को आसानी से पचाने में और कब्ज से बचाने में हमें मदद करती है। पपीता इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है जिसमें विटामिन सी जो पाए जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। हमारे वजन नियंत्रण में भी ये काफ़ी काबू लाती है क्योंकि कम कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण ये लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और हमें बार बार भूख लगने से बचाती भी है। त्वचा और आंख, इसमें मौजूद विटामिन ई और ऑक्सीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार बनाने में और आंखों के सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर हम पपीता खाने का समय जाने तो यह पपीता खाने का जो समय है वो खाली जो पेट है उस टाइम खाने से काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और अगर नाश्ते में सुबह नाश्ते के वक्त या फिर दोपहर में भोजन के बाद के पहले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नाश्ते के समय में अगर हम इसका भी सेवन करें तो अच्छा है और दोपहर के समय खाना खाने के पहले आप इसे खा सकते हैं। तो इन सब को खाकर हम अपने ऐसे फलों को खाकर अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ अगर हम अपने घरों में इनके बागान को लगाते हैं, इनके पेड़ को लगाते हैं बागान में, और बागान भी अगर खूब फले फूले तो एक सब्जी भी एक अच्छे कायदे से मिलते हैं हमें। एक सब्जी के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और एक फल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इनके जो पत्ते हैं वो पोटेशियम को जो घट जाता है उसे बढ़ाने में काफ़ी मदद भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है, अगर हम अपने घर में रखें तो स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे वातावरण साफ सुथरे भी मिलेंगे, हमें हवा भी शुद्ध मिलेगी और खान पान में भी शुद्धता रहेगी। तो दोनों चीज़ों की प्राप्ति हमारे इस पौधे से होगी। तो हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी के साथ हमें जोहर पलामू से आगे दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जोहर पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे श्री प्रसाद कुमार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओं, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी,
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
2: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
2: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
2: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है
2: जी।
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
2: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
2: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
2: जी।
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
2: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जानें।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, और वो ये कि
2: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
2: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
2: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सच्चियाकाल चाचा।
3: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन-जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के

0: अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
1: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
2: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
3: निर्मल सर, आप यहाँ?
2: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
3: सर, ये तो हमारा काम है।
2: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
3: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
2: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
1: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
2: एक मिनट मानसिंह, तो मैंने फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
0: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
1: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम

0: बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नैक विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, तब तक मारूंगा नहीं, तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूँ। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी।

0: भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: सेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमरीका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमरीका के समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओ योंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने ओ योंग वुइन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. The camps will continue today as well. The EC said that block level officers or BLOs present at these camps are guiding the students to fill their forms, collect the filled in forms and also resolve queries related to SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that the developments reflecting the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystem, underlining the Navy's efforts towards achieving self-reliance in the defense sector. Defense Minister emphasized that the Indian Navy's warship production ecosystem is now meeting global benchmarks, highlighting the government's commitment to the modernization of the Navy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh stated that the Indian Navy serves as a strategic anchor in the vision of Viksit Bharat 2047. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Taiba terrorist was killed in an encounter with the security forces in Badgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Taiba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army Police and the Central Reserve Police Force CRPF in Korag near Yusmarg in Badgam. Musa was wanted for his involvement in several attacks in Jammu and Kashmir. He escaped an encounter in the Yusmarg Hills on September 5, in which his close aide Yasir was killed. Home Minister Amit Shah is visiting Punjab today to flag in Nasha Mukt Punjab Yatras in Jalandhar. The Home Minister will also attend a gathering on the occasion. The yatras, which were launched by BJP President Nitin Naveen on 18th of this month from Pathankot, have covered a distance of 4,000 kilometres in all the 117 assembly constituencies in 13 days. The objective of yatras was to transform the fight against drugs in Punjab into a people's movement. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will attend the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin today and tomorrow. The meeting is being held at the invitation of the United States Trade Representative Jameson Greer. During his visit to the United States, Mr. Goyal will also hold discussions with his U.S. counterpart on advancing negotiations for the India-U.S. bilateral trade agreement. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe and Tamil Nadu and some parts of northeastern states today. IMD has also forecast thunderstorms with lightning and gusty winds over coastal Andhra Pradesh, Puducherry, Odisha and Madhya Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. At the Asian Games 2026, India's compound mixed archery team of Sahil Yadav and Chikita Taniparthi has won gold medal, beating Korea in a shoot-off in the finals. India duo also secured 2028 Olympic quota place. With this win, they defeated Thailand in the semi-finals. President Draupadi Murmu today congratulated women's compound archery team on winning the gold medal. In a social media post, the president said that exceptional precision, composure and teamwork of the archers have made the nation proud. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर हमारे श्रोता हमारे साथ इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि थोड़ी ही देर में आपकी अपनी पसंद के फिल्मी गीतों और आपकी अपनी जो फरमाइशें हैं, आपके अपने जो नाम हैं, उन्हें लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल कुछ जरूरी संदेश समाचारों के बाद आइए सुनते हैं।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, और यही सब काम है आकाशवाणी का, देश के लोगों को अवेयर करना, देश के लोगों को जागरूक बनाना और उन्हें सक्षम बनाना कि वो अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए खुद ही निर्णय ले सकें और खुद ही तत्पर हो सकें। तो बहुत ही आसान भाषा में ये दो संदेश आपने सुने, और उन दो संदेशों को अगर वो आपके साथ संबंध है उनका, यानी SIR के अंतर्गत, तो आप उस पर कदम उठा सकते हैं, या फिर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज जो हैं KYC की, तो उस पर भी आप आसानी से अपनी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। कैसे, वो आपने मैसेज में सुना। और समय हुआ है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपना ईमेल हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए, और अपने नामों के लिए ही बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। तो श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले गीत सुनवाऊंगा, उसके बाद फिर पहला गीत किन श्रोताओं की पसंद पर शामिल किया गया है ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन भी आपसे करूंगा दोस्तों, कि आप जो ईमेल कई बार भेजते हैं और कार्यक्रम नहीं सुन रहे होते हैं फिर भी मेल भेजते रहते हैं, ऐसा ना करें कृपया। जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो लोग मेल भेजकर अपने नाम शामिल करवाना चाहते हैं, अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके नाम शामिल हो पाएं। तो इसीलिए सिर्फ एक मेल करिए, और अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तभी मेल करिए। तो आइए सुनते हैं ये पहला खूबसूरत सा गाना, जो खूबसूरत कश्मीर की वादियों की झलक एक तरह से हमें दिखलाता है। बेमिसाल फिल्म का ये गाना है

0: जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
1: अच्छा,
0: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में, तो वो शो लिखना था उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा, तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल दो साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया, फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में, 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था, तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज, तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई, बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ जिनके साथ, तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल, यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
3: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
2: आके सीधी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए, ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की,
1: जी
0: काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था। 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था, और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया, और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे। वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते।
0: जी
1: बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लम डॉग मिलेनियर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैंने बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले, और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा
1: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने,
0: बिल्कुल
1: ना मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए, और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इंप्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
0: जी
1: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता
0: और जब तक है जहां, उससे भी
1: हूँ।
0: आप रिलेट किए, उससे कैसे
1: हाँ,
0: जुड़ना हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
0: जी
1: तो फिर से मुझे, क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया,
0: अच्छा
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो YouTube पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
0: जी
1: सीन्स के साथ
0: अच्छा
1: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया, उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
0: जी
1: था
0: जैन
1: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
0: अच्छा
1: वो शानू की असिस्टेंट थी,
0: हाँ।
1: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी कि, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
0: मौका
1: कल्टी
0: मिल गया
1: मौका मिलते ही मतलब
0: आपको
1: मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
0: जी
1: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन

0: रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है,
1: अच्छा,
0: 2 दिन बाद
1: उसी
0: या
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ सेम रोल का ही
1: अच्छा,
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
1: हाँ,
0: था
1: वो कुछ
0: और
1: अलग
0: मैं
1: क्लिक
0: उस
1: कर
0: वक्त एकदम
1: गया
0: ऐसा था 90 किलो का
1: तो हमेशा
0: तो
1: ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है, ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है? बार
0: अलग
1: बार
0: अलग
1: राउंड्स देने
0: प्रोजेक्ट पे।
1: पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज़्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
1: अच्छा।
0: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा MTV बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
0: बहुत
1: कहीं,
0: सारे।
1: बहुत
0: हाँ
1: सारे। तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
0: वो
1: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
0: नहीं मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
1: बिल्कुल।
0: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब
1: हम सब
0: इसमें
1: साथ
0: तुम्हारे
1: में
0: साथ
1: हैं।
0: में हैं। तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है बस
1: बिल्कुल।
0: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो
1: वो
0: जाएगा
1: जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
0: जी
1: में, तो
0: हाँ
1: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: कि
0: उसके
1: मेरा
0: डायलॉग मैंने
1: जन्म
0: लिखे
1: ही,
0: हैं फिल्म
1: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि
0: में
1: मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
0: फिल्मिस्तान
1: थोड़ा सा।
0: मैं असल में जब मैं तब ये UTV मंद्रास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मेरे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है अब मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान,
1: फिल्मिस्तान।
0: तो वो मैं

0: मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
0: वो
1: जाता है,
0: मिल जाता है, तो वही
1: ऐसा ही
0: हुआ
1: कुछ
0: मेरे
1: हुआ।
0: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत?
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था, जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में। और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं?
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: मतलब कि
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में
0: में।
1: जो है, मुझे थोड़ा 2 दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि
1: था।
0: बस ये ही मेरी, ये ही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
0: पैदा
1: हुआ हूँ, और जब मैं लोगों
0: हुआ।
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें
1: जी।
0: भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं
1: हाँ
0: के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा ये
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी।
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर कि अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
0: मैं
1: मैं
0: प्रोड्यूसर
1: प्रोड्यूसर हूँ तो राम
0: हूं।
1: सिंह चार्ली का हूँ, जो
0: जी।
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस।
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहां से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं मैं,
0: जी।
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे
1: अंदर।
0: काफी रिलेट कर पाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं, और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं, इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने अगर मेहरूनी में जो किया है,
0: मेहरूनी की बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल,
1: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
0: जी जी जी जी।
1: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक हाँ मिडिल क्लास वाला,
0: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव
1: तो
0: आ जाता है।
1: हाँ
0: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
1: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, हाँ। मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
0: बिल्कुल
1: इतना यकीन,
0: वो सुनवा देते हैं, वो गीत हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी.
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक

लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी, जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था।

0: उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है, उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था। तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फ़ोन का इंतज़ार भी करने लगते हैं कि यार अब
1: बिल्कुल.
0: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया, और उसके बाद लेकिन फ़ोन आया। और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे। नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है.
0: कंफर्टेबल हैं? तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं इसको। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब। तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो, बहुत सारे मात्रे।
1: जी.
0: फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव
1: होगा
0: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।
1: जी.
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीज़न 1, और वो ओटीटी पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की, मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे।
1: बिल्कुल.
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे, और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीज़न 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए, मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया।
1: बिल्कुल.
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया।
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल.
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा। और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे। तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ वो
1: हाँ.
0: कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम।
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको, मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक, मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा कुछ
1: बिल्कुल.
0: अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की,
1: बिल्कुल.
0: राजेंद्री के बहुत हमें, मतलब आज़ादी देते हैं। जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं, मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं, और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है। तो अब मैं सीज़न 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें.
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहां पे एक्शन सीरीज होती है, तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं
1: स्टंट्स आप
0: वर्कशॉप
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
1: उठा
0: हैं,
1: लेते
0: और वो
1: हैं?
0: कोई बोलता भी नहीं है कि
1: जी.
0: आप करो। अगर
1: हाँ.
0: डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं। और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस

0: प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज्ड टू हो जाते
0: यूज
1: हैं।
0: टू हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा। लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से।
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल।
0: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ,
1: जी।
0: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
1: जी।
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे अपने अपने ऑडिशन के तरीके को, या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं, उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं, या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना, वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए। कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं, वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको?
0: कमाल हो जाएगा
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना चाहूंगा, जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ, और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही,
1: फिल्में बहुत पसंद है
0: जी,
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ, और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू।
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी, और आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में जी, मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: सेल्युलॉयड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कताए ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल। कलाम है उस्ताद शायर दाग दहलवी का, तर्ज है खयाम की।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: धनक घटा कलियां और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती

0: होती है और मुझे पता भी नहीं होता कोई जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न। बंदा ये बिंदास है, बंदा
1: ये बिंदास है। अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चुनोई की आवाज में। गीत है शाम, अनुरागी का संगीत है बिद्दू का। एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सेन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शोभा मोदगल की आवाज में। गीतकार है अनिल पांडे, संगीत है संदेश शांडिल्य का, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में दो और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने कक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में दो अभियानों में 8 लोगों

गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज यादों की ये महफिल सजी है मशहूर पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी यानी के शान के शानदार गीतों से। आज उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार और आप सभी की तरफ से हम उन्हें देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर अंजान, संगीत है मोंटी शर्मा का और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
1: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
2: आइए सुनिए अगला गीत शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है फना।

गायक शांतनु मुखर्जी 30 सितंबर 1972 को खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक जाने माने गीतकार थे और पिता मानस मुखर्जी एक मशहूर संगीत निर्देशक थे और उनकी बहन सागरिका भी एक बेहतरीन गायिका हैं। साथियों, संगीत के माहौल में पले बड़े शान ने मात्र 4 साल की उम्र से विज्ञापन गीत यानी जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था और उनके एल्बम तन्हा दिल और भूल जा बहुत हिट हुए थे। हिंदी के अलावा शान ने मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में भी गीत गाए हैं। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत। साथ में है सुनिधि चौहान भी, नगमा निगार है जावेद अख्तर, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है तारा रंपम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, गायक शान को अपने शानदार गायन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार और कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत सुनिए शान और श्रिया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोय और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में। गीत रचना सुआनंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में

0: और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीतों से। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: Yeah. जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रही हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा

बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे को बताया अन्याय, सभी दवाओं पर एक समान 16% मार्जिन लागू करने की वकालत की। रांची के बड़गाई अंचल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोप गठन पर रोक लगाने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। कृषि मंत्री शिल्पिनेहा तिर्की ने कहा, वंचित और शोषित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। झारखंड में 5 अक्टूबर तक बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं। झारखंड समेत देश भर से मॉनसून की विदाई के मिलने लगे संकेत। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से रांची के खेलगांव में 3 अक्टूबर से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों द्वारा कैंसर की दवाओं पर लगाए जा रहे अत्यधिक मुनाफे पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अन्याय बताया और सभी दवाओं पर एक समान 16% मार्जिन लागू करने की वकालत की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों द्वारा अपनी या नामित फार्मेसी से ही दवाएं खरीदने के लिए बाध्य करने के आरोपों की जाँच करने को कहा। पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रथा मरीजों और करदाताओं पर बोझ डाल सकती है, विशेषकर तब जब इलाज सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे की गहन जांच की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति दर्ज कराने और विवरण संशोधन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। हालांकि दावा आपत्ति की सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है। यदि आयोग से स्वीकृति मिलती है तो पूर्व से तय 19 अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी दिसम्बर तक किया जा सकता है। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप गठन की कार्यवाही रोकने और ED कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से आज बुलाए गए झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। एक ओर राजधानी रांची में बंद का कोई खास असर नहीं है, जबकि पलामू, बोकारो और विभिन्न जिलों में मिलाजुला असर देखा जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, जिससे कुछ घंटों तक परिचालन प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों और मजदूरों की विभिन्न लंबित मांगें अब तक पूरी नहीं किए जाने के विरोध में यह बंद बुलाया गया है।
1: हमारी मांगे एक ही है कि सरकार जेल की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सबको एक समान पेंशन दे, यही हमारी मांगे हैं।
0: राज्य की कृषि मंत्री शिल्पिनेहा तिर्की ने नई दिल्ली में आयोजित दलित आदिवासी सेल्फ रिस्पेक्ट मीटिंग में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने दलितों और आदिवासियों को समान सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकारों तथा समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मंत्री ने कहा कि वंचित और शोषित वर्गों को सम्मानजनक स्थान और समान अवसर सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा सामाजिक न्याय और समानता के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष, पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों ने बिना गारंटी के लोन लेकर कारोबार शुरू किया।
2: मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। फिर भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है।
0: मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बिना किसी गारंटी या गिरवी के 20 लाख तक का ऋण दिया जाता है। सिमडेगा जिले के लाभुकों ने अपने अनुभव साझा किए।
3: पहले हम लोग का स्थिति कुछ ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेने से हम बिस्कुट का कारोबार कर रहे हैं, अभी स्थिति ठीक है हम लोग का घर का।
4: मुद्रा योजना के तहत लोन लिए, जिसमें एक एंट्री का दुकान खोले हैं, लोन है उसके तहत बहुत सहायता मिला और उम्मीद करते हैं कि दुकान खोल के कुछ फायदा होगा।
0: दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने हटिया से बेंगलुरु और मुंबई के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दोनों रूट पर ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित दिनों पर चलेंगी। हटिया SMVT बेंगलुरु स्पेशल 14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार हटिया से सुबह 9 बजे रवाना होगी। वहीं हटिया LTT स्पेशल 12 से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक सोमवार चलेगी। धनबाद SSP प्रभात कुमार ने दुर्गा पूजा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पूजा पंडालों में CCTV, अग्निशमन और अलग प्रवेश निकास द्वार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जिले को 8 जोन में बांटकर रात्रि गश्ती तेज करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि पूजा से विसर्जन तक DJ बजाने पर समिति का लाइसेंस रद्द कर DJ जब्त किया जाएगा। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुपी में 24 सितंबर की रात ऋत्विक यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश के विवाद में 10 से 15 युवकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।
5: ये पूरी घटना आपसी रंजिश को लेकर के हुई है। 24 तारीख को फिर से ये लोग उसके साथ 5 दोस्त उसमें कार में आए और 2 दोस्त उसके बाइक से आए। इसमें और भी हो सकता है लोगों के संलिप्तता होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। हम लोग उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं।
0: शेयर बाजार में आज घरेलू इक्विटी इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 58 अंक बढ़कर 22,774 पर रहा। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,33,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर तक राज्य में बारिश, आंधी या वज्रपात को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। विभाग के अनुसार झारखंड समेत देश भर से मॉनसून की विदाई धीरे धीरे शुरू होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से रांची के खेलगांव में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से जिला स्तर पर चयनित अंडर 17 आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे को बताया अन्याय, सभी दवाओं पर एक समान 16% मार्जिन लागू करने की वकालत की। रांची के बड़गाई अंचल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोप गठन पर रोक लगाने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, वंचित और शोषित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। झारखंड में 5 अक्टूबर तक बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं। झारखंड समेत देश भर से मॉनसून की विदाई के मिलने लगे संकेत। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से रांची के खेलगांव में 3 अक्टूबर से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

इस तरह से हैं: राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषिदा ने न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन और एडिटर काम शुरू किया। उसके बाद वो मशहूर फिल्मकार बीमल रॉय के साथ मुंबई आ गए और दो बीघा जमीन जैसी फिल्म में सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। उनकी फिल्मों की कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी, सरलता, सादगी, सौम्य हास्य और आम जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती थी। ऋषिदा ने आम मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का आधार बनाया।

और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है, उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतजार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफर हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएं निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवास की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफर में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, ए के हंगल, डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आंखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों, उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है, और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस जमाने में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक खास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मजेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे। और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दें। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था।

अंग्रेजी के प्रोफेसर का और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमूल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएं होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज़्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोज़मर्रा जिंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में जमीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मज़ेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मज़ेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

साथियों आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं, वो हम पढ़ देते हैं। अमूल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, देवन वर्मा और ओम प्रकाश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान केवल एक संगीतमय फिल्म नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और वैवाहिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। ये फिल्म आज 50 से अधिक सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिखाती है कि किसी भी सफल विवाह की बुनियाद एक दूसरे की सफलता का सम्मान करने और अहंकार को रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था, तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूँ तो अपने आप को वहाँ पर खड़ा पाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं। तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

के जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश। मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी। और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency.

प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया

0: रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
2: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने

रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
1: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
2: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रेवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
1: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
3: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है असली।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची टीम ने 734 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जमशेदपुर में यह कार्रवाई कारोबारी ज्ञान चंद जायसवाल और उनके अकाउंटेंट संजय पारेख के परिसरों पर चल रही है। इन पर फर्जी कंपनियों के इनवॉइस के जरिए अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप है। यह मामला पूर्व में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी शिव कुमार देवड़ा से जुड़ा है। फिलहाल ईडी की टीम कारोबारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को खंगाल रही है। रांची के बड़गा

0: लगाई। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन कर आज शाम 4:30 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले हाईकोर्ट में मेंटेबिलिटी याचिका पर सुनवाई होनी है। विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर परीक्षा सुधारों में देरी का आरोप लगाया है। मंच के सदस्यों के अनुसार अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठन की घोषणा के 2 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंच ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है।
1: सरकार ने कहा था कि कमेटी का गठन होगा, अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। देखिए, लगभग 2 महीना होने को है, अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। दूसरा, जेपीएससी में अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। अगर जब अध्यक्ष ही नहीं होंगे और उनके मेंबर्स ही नहीं होंगे जेपीएससी में, तो जेपीएससी में आगे कैसे काम होगा, अगला कैलेंडर कैसे जारी होगा।
0: राज्य में 2 से 7 अक्टूबर तक 72वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। डोरंडा में राज्य स्तरीय उद्घाटन के साथ प्रभात फेरी, वॉकथॉन, बर्ड वॉचिंग और स्कूली प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने बताया कि 6 अक्टूबर को वन्य जीव अपराध और मानव वन्य जीव संघर्ष पर विशेष कार्यशाला आयोजित होगी।
2: फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सबके कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के लिए वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, और ये प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं प्रथम सप्ताह में। आप सभी लोग जानते हैं कि अवेयरनेस किसी बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सबके कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
0: रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में औद्योगिक विकास के लिए 100 एकड़ जमीन की मांग उठी है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित जायसवाल ने लातेहार चतरा में टमाटर प्रसंस्करण उद्योग और खास महल भूमि नवीनीकरण का मुद्दा उठाया। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के अजय कुमार स्केटिंग के जरिए 404 दिनों का भारत भ्रमण पूरा कर वापस लौट आए हैं। उन्होंने देश की विविधता को करीब से देखा और 4 धाम व 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म और युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया।
3: पूरे भारत की यात्रा की है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, 4 धाम की यात्रा की है, साथ में हम लेह लद्दाख का भी यात्रा में कंप्लीट किया हूँ। मुझे 13 महीना हुआ और 13 महीना के बाद में हम जाकर अपना कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में जाकर इंटर हुए हैं, और यहाँ पे मुझे काफी सारे भाइयों का सपोर्ट मिला। जिस प्रकार से मुझे हर राज्य के लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार सपोर्ट दिया, उससे कई गुना ज्यादा लोग झारखंड के लोग मुझे प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दे रहे हैं।
0: लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर रांची मुख्य मार्ग पर 5 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पेंशन, नौकरी और रॉयल्टी की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मांगे पूरी न होने पर 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी गई है। बोकारो पुलिस ने साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले 2 POS एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दूसरे लोगों के आधार और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर 180 से अधिक सिम एक्टिवेट किए थे। चास ASP के मुताबिक इनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था।
4: विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि चंदन क्यारी क्षेत्र में साइबर ठगी के लिए फर्जी सिम जो है वो निर्गत किया जा रहा था। सूचना के सत्यापन के लिए हमने दूरसंचार विभाग से भी संपर्क किया, तो वहां से जो हमें डेटा प्राप्त हुआ उससे हमें पता चला कि 2 व्यक्ति जिनका नाम प्रदीप दास और मुकेश गोप है, जो की बरमसिया थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं।
0: पलामू जिले के मनातू प्रखंड विकास पदाधिकारी मदन कुमार सुमन को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भूमि विवाद मामले की सुनवाई से जुड़ी होने की आशंका है। BDO ने पुलिस में लिखित शिकायत की तैयारी कर ली है और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रशासन सतर्क है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, ना ही पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा कर दी जाती है। कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी, आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल, अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही हो, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा, अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा। और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोमकाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर।
2: बिल्कुल,
1: तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को, अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
2: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी। और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में, अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो। और फिलहाल क्या करें,
2: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
2: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।
3: मिलाई

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, कोई छोटा सा तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना।
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है।
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में प्रेम करने का अलग तरीका होता है। हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाने।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया।
1: आप मुझे बोंकाई साड़ी देने वाली है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपके प्रति।
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं?
1: थोड़ी सी कम।
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे।
1: हाँ, और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगे तब। तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामितीय और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है। साथ ही बोमकई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना, इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं।
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है और बुमकाई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको?
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून,
0: तो मतलब ये
1: इस तरह अलग कॉम्बिनेशन वाली।
0: अच्छा, कॉम्बिनेशन। हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी। वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
0: ओ, तो बड़ी महंगी होती है।
1: कोई बात नहीं।
0: कॉटन बुमकई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बुमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बुमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए एक बुमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बुमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
1: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी।
0: और आज बुमकई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
1: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकाई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुँच रही है।
0: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती हैं
1: वो देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है जो सखियां सुन रही है तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
0: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। तो और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: तो मंदाकिनी जी, आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें, अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है। इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप साहित्यकार हैं, आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद। और इसीलिए आज का ये खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है, वो जो संवेदनाएं हैं, थोड़ी न थोड़ी उसमें छूट जाती है। लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो न पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए, और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
1: हम क्या करते हैं, भावों को अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है, और साथ ही भारत जो हमारा देश है यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है, और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है, और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है, जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार।

0: मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे।
5: हाँ,
4: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
4: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
4: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
4: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
4: अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: हाँ वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुँचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
4: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सब टाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सब टाइटल्स के साथ देखता हूँ।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
4: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहाँ पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफी समृद्ध बना दिया है और तेजी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं।
4: अनुवाद तो हो जाता है, कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहाँ पर चूक जाते हैं।
5: बिल्कुल, और अब हम चूक रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे हैं।
4: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर। और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा
0: ओल्ड
1: होता है।
0: जनरेशन, आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं।
0: बिल्कुल। और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहाँ से कहाँ चली जाएगी।
1: बिल्कुल
0: समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये
1: बिल्कुल
0: स्वाभाविक है दो
1: कि
0: पीढ़ियों के बीच
1: बीच
0: का।
1: अंतराल होगा। लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है। और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है। और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है। तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं। बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है। उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है। और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे। पहले माता पिता, बड़े
1: तय
0: बुजुर्ग तय
1: करते
0: करते
1: थे।
0: थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है। युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है, ये
1: और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता, और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहर्ष स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है, और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती ही है।
0: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है, तो उनका ये कहना होता है अरे भाई यहीं पर हमारे घर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
1: चाहिए। हाँ, वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ, और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
0: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: रच उठता है और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एमआर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराए अपना तिरंगा और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को जो गोल्डन गर्ल्स कहलाएं और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
1: होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं, तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
0: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
1: बिल्कुल
0: लीक से हटकर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया, किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
1: बिल्कुल सही कहा। एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसी अच्छी नहीं लगती। रेडियो से की ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है। फिर सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
0: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है। किसी अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना। इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और मैं तो करता हूँ जरूर प्रशंसा।
0: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो वो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली हैं क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे हैं जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगाते

0: करता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी, आप खाएंगी तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगी।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया है, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है, हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए, एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च, लौकी, पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें, साथ ही मसाले, नमक, अजवाइन, ऑरिगेनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटे दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली। एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार, और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े बॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है, और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए।
1: जी, मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहाँ बहुत बड़े बड़े रेडियो थे, वॉल वाले, और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट। तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे।
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने, मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का। विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
0: है। क्या बात है।
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी, जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था, उनकी आवाज से, उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहाँ, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छूट गई कोई बात नहीं, स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी,
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो, और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
0: जी, जी, जी।
1: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे, और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी, जी।
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है, तो

0: फन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।
1: 3 साल में एक
0: तीन, हाँ 3 साल में एक। और मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से, देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहाँ भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर किसी विषय पर तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
0: ये बम्बई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे।
1: जी जी।
0: रमन मिश्री जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बम्बई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, वो तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
1: अच्छा।
0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था। और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा, तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरी कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी। तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है?
0: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल।
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी।

0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली
1: जी,
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है
1: जी। तो सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज ना साज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
2: अच्छा,
1: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
2: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपक के सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
1: क्या बात है।
2: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। उस सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
1: जी।
2: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चौल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
1: जी जी।
2: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजा है फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल
1: होता,
2: आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: नहीं बताया जाता,
2: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
2: जी,
1: जिसमें
2: जी,
1: सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
2: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
1: जी,
2: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
1: जी।
2: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी,
1: सारंगी भी और दुख में
2: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
2: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी। फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर
1: जी, पंडित कुमार गंधर,
2: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
2: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
2: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
2: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
2: जी जी,
1: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी के मन में?
2: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी असल में, जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
2: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
1: जी जी।
2: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
2: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
2: नहीं,
1: लिए
2: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था जिनका,
1: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
2: किताब शामिल थी मेरी
1: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म, बेहतरीन।
2: वो असल में जेसीबी की एक विज्ञापन फिल्म थी, वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है, तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
2: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी
2: है,
1: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
2: जी।

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारे छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता है। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया, फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया। मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? तुम मैं मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूले एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
0: अच्छा।
1: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है, 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताती कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
0: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
1: नहीं मिला,
0: नहीं मिला।
1: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
0: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
1: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
0: पास नहीं हो सकते,
1: पास नहीं हो पाऊंगा।
0: ओके।
1: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
0: जी,
1: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो। गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ।
0: जी
1: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
0: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
1: हाँ हाँ हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
0: बस
1: तो बस बहुत हो गया।
0: हाँ।
1: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: अच्छा मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयाँ बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
0: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
1: नहीं वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं छठवीं फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
0: अच्छा।
1: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
0: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
1: उसके मतलब कारण पास हो गया।
0: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
1: बिल्कुल पास किया होगा।
0: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
1: मैं हर

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी,
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग है वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम कसमें जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उसको एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक

0: है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
1: जी,
0: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है। और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है, यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब पिंग भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
1: जी।
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने ढंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
1: जी।
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसते जा रही है
1: जी।
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है, वो जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना, वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़।
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारो, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: उनके ही सारे फेस्टिवल, उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
1: जी,
0: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए।
1: जी जी जी।
0: शिक्षा और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के। ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी, फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफ साइड। ऑफ साइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है। तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां।
1: तो ये सब अपनी हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
0: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
1: जी।
0: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
1: जी,
0: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है। तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
0: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
1: जी,
0: कि किसकी किसी तरह की, मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा, जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
1: जी जी।
0: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
1: जी जी।
0: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
1: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
0: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती मिठाई तोलने की उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
1: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
0: हाँ एकांत चाहिए,
1: एकांत चाहिए।
0: हाँ, मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
1: हाँ,
0: तो काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
1: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
0: जी, जी।
1: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
0: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरी

0: वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें। तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल जी। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
0: उत्कृष्ट तो, चित्रकार मतलब
1: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
0: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी, हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है ना कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं। और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी,
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में
1: बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेली मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है, और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा।
1: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो।
1: जी जी,
0: लेकिन जब तक नहीं सुनाओ तब तक उसको नींद नहीं आती थी। तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की
4: सुबह। तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। ईडी ने 734 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के सात ठिकानों पर छापेमारी की है। जमशेदपुर में ये कार्रवाई व्यवसायी ज्ञान चंद जायसवाल और उनके अकाउंटेंट के परिसरों में चल रही है। इन पर फर्जी इनवॉइस के जरिए अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पारा शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर प्रभावित सहायक अध्यापकों को सेवा में बनाए रखने और अगस्त 2024 से रोके गए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर परीक्षा सुधारों में देरी का आरोप लगाया है। मंच के सदस्यों के अनुसार अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठन की घोषणा के 2 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जामताड़ा में आज उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने जिले के संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर कड़ी रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। बोकारो पुलिस ने साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले 2 POS एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दूसरे लोगों के आधार और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर 180 से अधिक सिम एक्टिवेट किए थे। चास एएसपी के मुताबिक इनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: आप सुन रहे थे मुख्य

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी, जब खुश होती है जिंदगी।

0: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं छाती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चमकते रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हमेशा हरे रहते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर सी सजी होती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वो कांटों की परवाह नहीं करते। खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।
1: हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के,

प्यार की खुशबू से जिंदगी लवरेज हो गई एक रोज। हर मुलाकात में फूलों का खिलना था, हर बात में मुस्कान। माँ ने सिखाई थी एक बात, एक गठान दी थी। लगता था अब कभी कुछ टूट नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ठहरा नहीं। धीरे धीरे रिश्ते बदलते गए, शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली और समझ की जगह ना समझी ने। माँ ने जो गठान लगाई थी वो जुड़ने के लिए थी, लेकिन अब टूटने की जिद करने लगी। सिक्के अब भी जेब में थे पर हाथ कांपने लगे थे उन्हें खर्च करने से पहले।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी स्मृतियां होती हैं, कुछ खुशगवार, कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान हो जाता है। कुछ दर्दीली स्मृतियां हमें सहलाती भी हैं, कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं प्यार भरे गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज के ध्वनि तरंगों पर। अब आइए शामिल होते हैं हम अपनी आज की सायंकालीन सभा में।

आइए आज अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 5:35 पर महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा घर आंगन। कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी भाषा विविधता और भाषा अधिकार विषय पर। गीता कुमारी की एक वार्ता भी प्रसारित की जाएगी, विषय होगा बुजुर्गों के सेहत का रखे ध्यान। शाम 6:02 पर ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी धान फसल को बीमारियों से बचाए और कम पूंजी में सागों की खेती विषय पर। इसके साथ ही एक सफल मधुमक्खी पालक और मछली पालक किसान शिवनाथ कुशवाहा से की गई बातचीत हम आपको

शाम 6:30 बजे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। कार्यक्रम में समसामयिक कृषि कार्य की चर्चा होगी, इसके साथ ही जैविक खेती बहुत आवश्यक विषय पर भी जानकारियां दी जाएगी। आप एक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे से की गई भेंटवार्ता सुन सकेंगे। विषय होगा मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण, कार्यक्रम ग्रामीण सभा के अंतर्गत। फिल्मी गीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे 7:15 बजे से। कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 बजे कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत दांतों की आम समस्या एवं देखभाल विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल जफर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। इनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से हमारे श्रोता सुनेंगे शाम 8 बजे से। 10:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप पुनः सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की। अब आइए अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 6 बजे मुख्य प्रादेशिक समाचार, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से।

8:45 हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे श्रोता सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। और इस प्रकार हम अपनी सभा की समाप्ति करेंगे रोजाना की तरह रात्रि 11:10 पर। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज सर्वप्रथम बातें हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। हम हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। यह दिन अनुवादकों और भाषा विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। अनुवाद अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस राष्ट्रों के बीच संवाद, आपसी समझ और सहयोग को आसान बनाता है। इससे विश्व शांति को मजबूती मिलती है। यह दिन भाषा सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के समर्पण और योगदान जो उनके प्रति है उसको मान्यता देता है। हम यह बताते चले कि भारत विश्व के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं की विविधता की समृद्ध विरासत मौजूद है। भारत के संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में बहुभाषावाद जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग जन्म से ही एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं और जीवन काल में अतिरिक्त भाषाएं सीखते हैं। जी हाँ, हालांकि आधिकारिक तौर पर 122 भाषाएं हैं लेकिन भारतीय जनभाषाई सर्वेक्षण ने 780 भाषाओं की पहचान की है जिनमें से 50 भाषाएं पिछले 5 दशकों में विलुप्त हो गई हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। ये सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इन भाषाओं में से संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा और मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं माना गया है। अनुसूचित और शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भारत की भूमि या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। भारत की भाषा नीति भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करती है। भारत की एक और अनूठी विशेषता, बच्चों को उनकी मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना है। संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जी हाँ श्रोताओं, ये बातें हुई अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की, भाषाओं की। और कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अब आइए सुनते हैं गीता कुमारी की वार्ता। विषय है बुजुर्गों की सेहत का रखे ध्यान।
1: जिस समाज ने अपनी बुजुर्ग पीढ़ी का सम्मान करना छोड़ दिया, वह अपने अतीत से नहीं अपने भविष्य से भी कटने लगता है। भारत केवल युवाओं का देश नहीं है, यह उन हाथों का भी देश है जिन्होंने खेतों में पसीना बहाया, कारखानों में मेहनत की, परिवारों को संभाला, बच्चों को शिक्षित किया और अपने सपनों से पहले आने वाली पीढ़ी के सपनों को महत्व दिया। आज जब हम विकास तकनीक और आधुनिकता की बात करते हैं, तब हमें यह भी याद करना होगा कि इस देश की वर्तमान नींव उन बुजुर्गों के अनुभव और त्याग पर खड़ी है जिन्होंने अपना जीवन हमारे भविष्य के निर्माण में लगा दिया है। बुजुर्ग होना जीवन की कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव की परिपक्वता है। उम्र शरीर को धीमा कर सकती है लेकिन जीवन का अनुभव व्यक्ति को गहरा बनाता है। इसीलिए बुजुर्गों की देखभाल केवल चिकित्सा का विषय नहीं है, यह हमारे परिवार, समाज और मानवीय संवेदनाओं की परीक्षा भी है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कितने वर्षों तक जीवित रहें, असली प्रश्न यह है कि वे उन वर्षों को कितनी गरिमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जी पाएं। स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चर्चा करते समय हमारा ध्यान अक्सर दवाइयों और बीमारियों तक सीमित रह जाता है, लेकिन स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य जीवन तब माना जाएगा जब वह अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रह सके, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, मानसिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करे और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार में सम्मान और अपनापन महसूस करे। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है, दृष्टि और श्रवण क्षमता प्रभावित हो सकती है और कई लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं या अन्य दीर्घकालिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर चिकित्सा सलाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीमारी का इंतजार करने के बजाय स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना अधिक समझदारी है। बुजुर्गों के लिए भोजन केवल पेट

दालें, अनाज, सब्जियां, फल उचित मात्रा में प्रोटीन और पर्याप्त तरल पदार्थ उनके दैनिक आहार का हिस्सा हो सकते हैं। वही आध्यात्मिक नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन सीमित रखना आवश्यक हो सकता है। हर बुजुर्ग के लिए एक जैसा आहार सही नहीं हो सकता। मधुमेह, किडनी, हृदय या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति के लिए भोजन डॉक्टर या योग पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार होना चाहिए। इसलिए देखभाल का अर्थ केवल यह पूछना नहीं कि खाना खाया, बल्कि यह समझना भी है कि क्या सही खाना खाया। खून बढ़ने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। बुजुर्गों की क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार नियमित हल्की शारीरिक गतिविधि उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। टहलना, हल्के व्यायाम या डॉक्टर की सलाह के अनुसार गतिविधियां शरीर को सक्रिय बनाए रखने में सहायता कर सकती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बुजुर्गों को युवा लोगों की तरह अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य प्रतियोगिता नहीं सक्रियता है। यदि किसी बुजुर्ग को चलने में कठिनाई है तो परिवार का कोई सदस्य उनके साथ रहे। यदि संतुलन की समस्या है तो सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य के नाम पर लापरवाही नहीं बल्कि समझदारी आवश्यक है। कई बुजुर्ग नियमित रूप से अनेक दवाइयां लेते हैं। ऐसे में दवा का सही समय, सही मात्रा और डॉक्टर के निर्देशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्यों की यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवाइयों को लेकर भ्रम न हो। आवश्यकता पड़ने पर दवाइयों की सूची व्यवस्थित रखी जा सकती है और डॉक्टर से नियमित परामर्श लिया जा सकता है। बिना चिकित्सीय सलाह से दवा शुरू करना, बंद करना या बदलना उचित नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों की देखभाल में एक छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला पक्ष है सुरक्षा। गीला फर्श, अंधेरी सीढ़ियाँ, रास्ते में रखा सामान, बाथरूम में फिसलन या पर्याप्त रोशनी का अभाव गिरने का कारण बन सकता है। इसीलिए घर के बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनाना भी उतना ही आवश्यक है जितना उन्हें दवा देना। जहां आवश्यकता हो वहां पर्याप्त रोशनी सुरक्षित पकड़ने की व्यवस्था और साफ रास्ते सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बुजुर्गों का स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील पक्ष उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है। एक समय था जब वे पूरे परिवार के निर्णय लेते थे, घर उनके इर्द गिर्द चलता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जब बच्चे अपने काम, करियर और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं तो कई बुजुर्ग स्वयं को धीरे धीरे परिवार के केंद्र से बाहर महसूस करने लगते हैं। यह अकेलापन हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होता, कभी वह चुप्पी बन जाता है, कभी बार बार एक ही बात पूछने के रूप में सामने आता है, कभी छोटी सी बात पर भावुक होने के रूप में। इसीलिए बुजुर्गों को केवल सुनना नहीं समझना भी जरूरी है। उनके साथ बैठिए, उनकी पुरानी कहानियाँ सुनिए, उनसे उनकी राय पूछिए, उनके अनुभवों को महत्व दीजिए। कभी कभी किसी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी जरूरत दवा नहीं होती, किसी अपने का साथ होता है। आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है, बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और संचार तक बहुत कुछ मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर हो गया है, लेकिन हर बुजुर्ग तकनीक के साथ उसी गति से नहीं चल सकता। इसीलिए उन्हें आपको तो कुछ आता ही नहीं कहकर पीछे छोड़ने के बजाय हमें धैर्य के साथ सिखाना चाहिए। मोबाइल पर वीडियो कॉल करना जरूरी, संपर्क सुरक्षित रखना, डिजिटल भुगतान में सावधानी बरतना या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया समझना, ये छोटी बातें उनके जीवन को आसान बना सकती है। लेकिन साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तकनीक पीढ़ियों के बीच दीवार नहीं पुल बननी चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल का अर्थ यह नहीं कि हम उनके हर काम को अपने हाथ में ले लें। यदि वे अपनी क्षमता के अनुसार कोई कार्य स्वयं कर सकते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
किसी व्यक्ति

0: व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीन लेना भले ही अच्छे इरादे से किया गया हो उसके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हमारी भूमिका उनके जीवन को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में सहयोग करने की होनी चाहिए। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, अस्पताल उपचार दे सकते हैं, दवाइयां बीमारी नियंत्रित कर सकती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है, लेकिन एक बेहतर भविष्य वही समाज बनाएगा जो अपने अतीत का सम्मान करना जानता हो। आज जो बुजुर्ग हमारे सामने हैं वे कभी युवा थे, उन्होंने भी अब सपने देखे थे, संघर्ष किए थे और अपने परिवार के लिए त्याग किया था। आज यदि उनकी चाल धीमी हो गई है तो हमें अपना कदम धीमा करना होगा। यदि उनकी आवाज़ कमजोर हो गई है तो हमें ध्यान से सुनना होगा। यदि उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि समय कभी एक दिशा में नहीं चलता। आज हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, कल हमारी अगली पीढ़ी हमारे व्यवहार से सीखेगी कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः बुजुर्गों का स्वास्थ्य केवल डॉक्टर, दवा और अस्पताल का विषय नहीं है। यह स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानसिक संतुलन, सामाजिक जुड़ाव, आत्मसम्मान और पारिवारिक प्रेम, इन सभी का संगम है। हम ऐसा समाज बनाना होगा जहां बुजुर्गों से यह न कहा जाए कि आपकी उम्र हो गई है, बल्कि यह कहा जाए आपने हमारे लिए बहुत किया है, अब आपकी बारी है कि हम आपका साथ दें। बुजुर्ग हमारे अतीत की कहानी नहीं है, वे हमारे वर्तमान का अनुभव और हमारे भविष्य की सीख है। उनके स्वस्थ जीवन में केवल एक व्यक्ति की खुशहाली नहीं बल्कि पूरे परिवार की संवेदनशीलता छिपी है। आइए हम बुजुर्गों की देखभाल को केवल कर्तव्य न माने बल्कि इसे अपने संस्कार का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जिस दिन हम अपने बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष और अकेलेपन की जगह अपनापन ला पाएंगे, उस दिन हम केवल एक परिवार की नहीं बल्कि एक समाज की नींव मजबूत करेंगे और शायद यही किसी की विकसित राष्ट्र की सबसे सुंदर पहचान होगी। उसकी प्रगति केवल उनकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उनके बुजुर्गों की आंखों में दिखाई देने वाले सम्मान से मापी जाए।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे गीता कुमारी की वार्ता, विषय था बुजुर्गों के सेहत का रखें ध्यान। जी हाँ, अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे थे घर आंगन कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में हमारे श्रोता सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची की विशेष अदालत ने बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठित कर दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल के लिए नवंबर की तिथियां तय की हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुसुम के एमएसपी में सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आदित्य प्रसाद साहू ने रामगढ़ में राज्य सरकार पर कोयला चोरी और डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने खनन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और खनिज ब्लॉकों के पारदर्शी नीलामी की मांग की, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। कोडरमा के सतगावा में शिक्षकों की कमी को लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। लगभग 3000 विद्यार्थियों वाले स्कूल के छात्रों ने नियमित पठन पाठन और नई बहाली की मांग की है। बोकारो में बीएसएल के जर्जर आवासों को खाली कराने के विरोध में आज आवास बचाओ संघर्ष समिति ने ईडी राजश्री बनर्जी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर वैकल्पिक आवासों की मरम्मत की मांग की। और सरायकेला खरसावां जिले की आदित्यपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काफी समय से फरार दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें करीब 1.5 साल से फरार चल रही ब्राउन शुगर तस्कर नाजिया परवीन और लूट तथा आर्म्स एक्ट का आरोपी विपुल कर्मकार शामिल है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे। चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में बातें हम करेंगे धान फसल की बीमारियां एवं बचाव की। जी हां, बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो धान की बृहद पैमाने पर खेती कर रहे हैं और कुछ हमारे ग्रामीण बंधु हैं जो निम्न स्तर पर कर रहे हैं, मध्यम स्तर पर भी कर रहे हैं। तो आवश्यक हो जाता है कि हम बीमारियों से बचाव कैसे करें और किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन करें ताकि हमारी लगाई गई पूंजी का दोहरा लाभ हमको प्राप्त हो सके। बिल्कुल किसान भाई बहन, धान की फसल में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और शीथ ब्लाइट जैसी बीमारियां प्रमुख हैं, जिनका समय पर प्रबंधन और फफूंद नाशकों का उपयोग करके बचाव किया जा सकता है। धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए उनकी बीमारियां, उनके लक्षण और बचाव के उपचार के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। धान का ब्लास्ट या झोंका रोग, ये बीमारियां, ये रोग जो हैं आप जानते होंगे किसान बंधु। लक्षण इसमें पत्तियों पर आंख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, ऐसा दृष्टिगोचर होता है, जिनका बीच का भाग राख जैसा और किनारे गहरे भूरे होते हैं। गंभीर अवस्था में गर्दन टूट जाती है और बालियां सूख जाती हैं धान की। बचाव और उपचार की अगर बात की जाए तो ट्राईसाइक्लाजोल 75% WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर हमारे ग्रामीण बंधु छिड़काव कर सकते हैं फसलों पर। फिर बात आती है जीवाणु झुलसा की। तो लक्षण की अगर हम बात करें किसान भाई, तो पत्तियां ऊपरी या किनारे के सिरों से लगी रहती हैं पत्तियों में, ये धब्बे और ये धब्बे सूखने लगती हैं, इसमें ऐसा देखा जाता है, पत्तियां सूखना शुरू करती हैं और लहरदार सूखी हुई धारियां बनती हैं उसमें। सुबह के समय पत्तियों पर पीला चिपचिपा पदार्थ या ओस जैसी बूंदें आपको दिखाई देंगी। बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 6 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से आप मिलाइए और फिर इसका छिड़काव करिए। इस दौरान खेत में यूरिया का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें। बिल्कुल किसान भाई, अब बात उठती है शीथ ब्लाइट की। किसान भाई बहन, पौधे के निचले हिस्से या पत्तियों के म्यान पर पानी से भीगे हुए धब्बे बनते हैं इसमें और बाद में सफ़ेद या फफूंद युक्त हो जाते हैं ये धब्बे। अब उपचार की बात आती है तो प्रोपीकोनाजोल 500 मिलीलीटर या हेक्साकोनाजोल 5 EC, याद रखेंगे प्रोपीकोनाजोल 500 मिलीलीटर या हेक्साकोनाजोल 5% EC कि 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। अब खैरा रोग की हम बात करते हैं। जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और पौधे की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो बचाव की बात जहां तक आती है ग्रामीण बंधु, तो खेत की तैयारी के समय ही जिंक सल्फेट का उपयोग करें, यह प्रथम है। लेकिन आप लोग तो खेती कर रहे हैं अभी, तो उस परिस्थिति में आप लक्षण दिखने पर 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करें किसान भाई। अब सामान्य रोकथाम की हम बात आपसे कर लें। किसान भाई बहन, हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों का ही हमें चयन करने की ज़रूरत है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित अवश्य करें। खेत में नाइट्रोजन, यूरिया का संतुलित और सीमित प्रयोग करें क्योंकि इसकी अधिक मात्रा से पौधे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खेत में पानी की सही निकासी की व्यवस्था आप रखिए और जल भराव से बचिए। किसान भाई बहन, कार्यक्रम में ये हुई बातें धान फसल की बीमारियां एवं बचाव की।
और अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: हमारे श्रोता सुन रहे थे नीलम सहाय एवं प्रियबदा सिंह के गाए लोकगीत। और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं एक सफल कृषक जो मधुमक्खी पालन और मछली पालन दोनों एक साथ करते हैं। हमारे कृषक भाई हैं गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के गोंदा गांव के शिवनाथ कुशवाहा। शिवनाथ कुशवाहा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, प्रथम तो ये बताइए कि मछली पालन की क्या स्थिति है?
1: मछली पालन जो हम कर रहे हैं इसका डाल्टनगंज से ही बीज स्पॉन मिलता है और यहीं से बीज खरीद के और अपने पोखरा खनवा कर उस पोखरे में डालते हैं और उसी से मछली मैंने तैयार हो जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उसमें क्या खास ध्यान देना है कि मैंने कोई मारे ना या पानी जो तालाब से ऊपर से निकल जाता है उसका ना निकले और उसमें देख रहे हैं कि मछली के खाने के जोग उसमें खाना है कि नहीं है। अगर नहीं है खाना तो खाना देना पड़ता है, खाना है तो नहीं देना पड़ता है।
0: तो उसको मतलब बहुत पदार्थ के रूप में क्या देते हैं
1: उसको? उसको खाना के में देते हैं, उसमें गोबर ये डालते हैं या फिर DAP उसमें डालना हुआ या फिर उसमें पोटास यूरिया मिला करके उसमें करते हैं, पलवा बनता है उससे भी मछली का खाना मिलता है और इसे अथी मुर्गी का लाही भी ये देते हैं।
0: अच्छा।
1: इससे भी बनता है और एक ठो वो घास होता है अथी वो कोकड़ोला ऐसा घास होता है हम लोग के यहाँ जबरदस्त होता है अगल बगल, उसको नोच के पोखरा में डालते हैं, उसमें घास खाने वाला जो मछली है उससे खाते हैं, तैयार हो जाता है। आपका
0: ग्रास क्रॉप?
1: हाँ, जनवरी के अथी तरफ से जनवरी ले और ये आपका जैसे ही मैंने खत्म पानी उसमें होते नहींगा 1 किलो का साइज होता है, मार्च ले जनवरी फरवरी ले हो जाता है। तो उससे हम कहेंगे कि किसान भाई के अगर खेती करना चाहिए तो मछली के भी पालन, मछली में एक 1-1.5 रुपया का एक बीज हमारे समझ से पड़ता है और अगर ये 100 ग्राम का भी मछली हो जाता है तो 10 रुपया, कितनों कम तो 10 रुपया, लेकिन एक मछली अगर 1 किलो हुआ तो 100-150 रुपया किलो बन जाता है। आप मछली का जिस दिन आपका पैसा का जरूरत पड़ गया उस दिन आप बेच सकते हैं, उसे ATM की तरह आप उसको पैसा को निकाल सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे किसान भाइयों के कि मछली का मने ये पालन
0: आप कौन कौन सी मछलियाँ पाले हैं?
1: हम है रेहू, कतला, कोमलकार, गिलसकार, सिल्वर, ये 5 वैरायटी की मछली पाले हैं और 5 वैरायटी की मछली में घास भी रहता है तो वो सब खा जाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत खाना भी देना पड़ता है।
0: अच्छा। अलग से?
1: अलग से मैंने बाजार से खरीद के नहीं देते हैं, जो हमारे पास है वही देते हैं और उसी से बढ़िया हो जाता है।
0: ये मछली पालन का रोजगार चल कब से रहा है?
1: ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 7-8 साल से चला रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हम अपने कमा करके 10 कट्ठा जमीन खरीद करके और उसमें पोखरा एक खनवाए और उसी अपने हिसाब से पोखरा खनवा करके और उसी से हम अपना मछली को करते हैं। अब जिसे हुआ कि सरकार के अथी नरेगा से आता है लेकिन वो आपको जैसे तैसे होगा, पैसा निकालने के भावना से भी उसको खन के माटी छिड़ के या कोई तरह से कर करते रहते हैं, उसमें लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन जो अपना विचार दिमाग से जो अगर जो किसान भाई अगर मछली पालन करना चाहते हैं अगर बढ़िया विधिवत करें ना तो मछली बढ़िया।
0: कितना गहराई होगा अभी
1: उसके? लगभग लगभग हम देख रहे हैं कि 12-15 फीट
0: गहरा
1: है।
0: तो पानी तो रहता होगा?
1: हाँ, पानी है।
0: सालों भर?
1: नहीं, सालों भर नहीं रहता है वो, आपका मार्च लास्ट करते करते वो खत्म हो जाता है, मैंने कम हो जाता है पानी, वो चीज धीरे धीरे सूख जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सूखने के बाद फिर उसमें घास बहुत जबरदस्त जमता है।
0: अच्छा।
1: और घास फिर बरसात जब आएगा ना तो घास मछली के चारा भोजन बन जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया ऐसा होता है, इसी से मैंने बढ़िया रोजगार है उसको। हम कहेंगे जे किसान भाइयों मछली
0: तो ये आप अकेले करते हैं या समूह में करते हैं?
1: ये समूह में भी करते हैं, समूह में करते हैं तो बड़ा तालाब सा है और ये पर्सनल करते हैं।
0: अच्छा।
1: पोखरा वाला जो करते हैं उसमें पर्सनल,
0: और समूह वाला अलग है?
1: समूह वाला जैसे यहाँ पे 1 क्विंटल 20 किलो हम बीज ले आके डाले थे तो वो एक बड़ा सा तालाब है आपको 70 एकड़ के लगभग है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें हम लोग 40 गो खेते वाला था। तो हमने देख रहे बेकार के अगर पड़ल है हमारे पास आहरा है तो उसको देखे कि पड़ल है तो उसको विचार बनवावे, और विचार बनवा के 2,000 रुपया जमा किए लगभग 1,00,000 रुपया के लगभग, 1,00,000 रुपया के लगभग। और उसमें 42 क्विंटल मछली बने, और मारने वाला भी मार करके, और 120 रुपये किलो रेहू को
0: बेचे थे,
1: ले अपने से ले जाएगा, हम लोग उसमें नहीं कर रहे।
0: अच्छा, अभी भी आ जाता है ले जाने के लिए?
1: हाँ,
0: व्यापारी आते हैं और ले जाते हैं।
1: वहीं व्यापारी आएगा, वो अपना सब मार के, अब जितना कुंटल लेना है उतना मार के व्यापारी के हिसाब से, और मछली को ले आएगा, फिर बाद में हिसाब करके पैसा दे देगा। हाँ, इससे कर सकते हैं। बेकार को जो पड़ा रहता है, पानी डूबा हुआ रहता है, उससे कोई लाभ नहीं किसी को है, तो उसमें मछली हो सकता है।
0: तो इससे पटवन उटवन भी करते हैं?
1: हाँ, पटवन भी हो सकता है। उसमें पटवन के लिए क्या दिक्कत है, वो जो वहाँ भाव है उसका जो पानी निकासी का व्यवस्था है, उस जगह जाली लगाना पड़ेगा। अगर जाली नहीं लगाते हैं तो मछली निकलने का संभावना है। सब तो नहीं निकलेगा लेकिन निकल जाएगा। अब मछली का एक रेशियो होता है, मछली जो है कि लाइन जब धर लिया ना तो वो धर लिया, फिर वो आपको जात रहेगा तो जात रहेगा। अच्छा। और नहीं फिर उधर से आना लगेगा तो आई हो जाएगा।
0: अच्छा, ये भी है।
1: हाँ, मछली का यही है। हाँ, रेशियो। और जाली रहेगा तो उससे नहीं आएगा। हाँ, जाली लगा दीजिए, अपना भाव से पानी जो निकासी करना है पटवन कीजिए, मछली भी हो जाएगा तैयार। ये
0: मतलब हमारे किसान भाई जो बैठे रहते हैं, अगर उनके पास तालाब की सुविधा है तो वो ये कार्य कर सकते हैं, समूह बना करके
1: भी। हाँ, समूह बना करके कर सकते हैं, और ये अपना से भी कर सकते हैं। जिसे अगर समूह में नहीं चाहते हैं लोग, बहुत लोग उसमें करने के लिए ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, पैसा पूंजी लगाए, एक दी खाली एक आदमी अगर देख रेख में बढ़िया से आ जाए, 7 के 10 का मिलके, 5 का मिलके, जैसे जाए का समूह बनावे, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सा बेकार के देखते हैं, बहुत पड़ा हुआ है हर जगह, हर गांव हर घर में आहरा है, पोखरा है, खनवाए हैं, या तालाब है, नरेगा वाला जो है उसमें भी पला जाता है।
0: अच्छा, अभी की जो स्थिति है तो हमारे किसान भाई लोग जैसे प्रशिक्षण लें तो ज़्यादा बेहतर होता है मछली पालन। हाँ, में तो इसके लिए आप प्रशिक्षण कभी लिए थे?
1: हाँ, प्रशिक्षण लिए थे। प्रशिक्षण बिना प्रशिक्षण के ही मछली या कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है, इसलिए कि उसका एद भेद जो है ना जानकारी नहीं होता है। और मछली का प्रशिक्षण लेने से क्या होगा कि उसका विचार में आएगा, दिमाग में आएगा, या फिर उस पोखरा पर जाएगा, धरेगा। हाँ, दिखेगा तब आता है।
0: कहाँ से लिए थे प्रशिक्षण?
1: प्रशिक्षण हम लिए थे गढ़वा जिला में लिए थे।
0: अच्छा,
1: विज्ञान केंद्र,
0: कृषि विज्ञान केंद्र,
1: किसी विज्ञान केंद्र में।
0: तो वहाँ मधुमक्खी का भी?
1: हाँ, मधुमक्खी का भी प्रशिक्षण लिए हैं।
0: अच्छा, तो मधुमक्खियाँ की अगर हम बात करें तो अभी मधुमक्खी की क्या स्थिति है?
1: मधुमक्खी का स्थिति बढ़िया है, और अभी ये 15 दिन के अंदर में हमारा बन तुलसी का मधु निकलने लगेगा, बन तुलसी फुलाने लगेगा, जो जंगली घास कहते हैं। और हमारे यहाँ एरिया बहुत सा होता है।
0: अच्छा।
1: और हमारे यहाँ बिहार से लोग ला करके और वहाँ पर रखते हैं बक्सा।
0: हाँ।
1: और यहाँ से 4,00,000-5,00,000 रुपया कमा के चले जाते हैं। और हम लोग गढ़वा जिला का ही हो करके और उसके बारे में हम लोग जान वंचित रह जाते हैं। और वो लाभ हम लोग किसान भाइयों यहाँ के क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भी कहेंगे कि ज़्यादा से नहीं, अगर 2 बक्सा से भी 1 बक्सा शुरू करें तो बढ़िया से बढ़िया लाभ होगा।
0: अभी आपके पास कितना बक्सा?
1: हमारे अभी हमारे पास 110 बक्सा है, जिसमें कि मैंने 80 गो में मधुमक्खी है और बाकी 30 गो में नहीं है।
0: अच्छा, मैंने 80 लगा हुआ है?
1: नहीं, रखल है।
0: अच्छा।
1: हाँ, 110 बक्सा है लेकिन 80 गो में मधुमक्खी अभी है।
0: अच्छा। अब अभी आपको 15 दिन बाद सब बन तुलसी वाला?
1: हाँ, बन तुलसी वाला मध निकलना चालू हो जाएगा। और इसके बाद फिर बन तुलसी के बाद फिर निकलेगा आपका ये मुनगा में निकलेगा, सरसों में निकलेगा, फिर आपका बन तुलसी अथी में निकलेगा, ये शीशम में निकलेगा, परास तरास तरह मैंने 3-4 बार मध का स्रोत बढ़िया लग होता है। हाँ, और उससे क्या होगा कि जिसे मान लीजिए कि सरसों का भी है, सरसों में ये मधुमक्खी जब उड़ के जाएंगे उस पर लाही का जो प्रकोप होता है उससे पैर से नीचे गिर जाता है, उससे भी हम लोग का लाभ सरसों का ही फलन में बढ़िया अच्छा होता है, और मैंने मधुमक्खी के भी चारा मिल जाता है। और मधुमक्खी ऐसा चीज़ है कि हर किसान जो दिल से चाहे वो कर सकता है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसलिए कि मधुमक्खी का टोटल चीज बिकने वाला है,
0: बिल्कुल सही है।
1: मधुमक्खी बिकने वाला है, उसको छत्ता बिकने वाला है, मोम बिकने वाला है, सारा चीज बिकने वाला है। तो हम लोग मधुमक्खी के कर भी सकते हैं, उससे बहुत सा लाभ होता है। और मधुमक्खी अगर चाहे तो मधुरस के लिए हमारे एरिए से अगल बगल सभी लोग खाते हैं, अब खाना चालू कर दिए हैं, उससे परेशानी नहीं होता
0: जी। अच्छा, अभी खेती बाड़ी की अगर बात की जाए तो अभी खेतों खलिहानों में क्या लगाए हुए हैं आप?
1: अभी धान लगाए हैं और बैंगन लगाए हैं और टमाटर लगाए हैं,
0: मैंने सब्जियां की भी खेती चल रही
1: है। हाँ, सब्जियां की भी चलते हैं और बोदी लगाए हैं, लौकी है, करेला है, भिंडी है, ये सब तरह तरह के सब्जी
0: अभी लगे।
1: हाँ, अभी है, फल रहा है और बाजार समिति में ला करके बेचते हैं।
0: बाजार समिति गढ़वा में बेचते हैं?
1: गढ़वा, बाजार समिति गढ़वा में ला कर बेचते हैं। और उससे क्या होगा कि मधुमक्खी से उसमें फलन अधिक होता है, फलन का संख्या, पराग जो,
0: तो जहाँ भी सब्जी वगैरह लगाए हुए वहाँ पर मधुमक्खी का बक्सा होगा,
1: जहाँ है उसी जगह है, घर के पास है। उससे क्या होगा कि मधुमक्खी का जो फूल का जो पराग होगा ना, उससे मधुमक्खी का भी बाजती अंडा बच्चा देने में रानी का पराग मिलेगा, तो इससे ज्यादा होगा, संख्या बढ़ेगा और उससे सब्जी का ही फलन का ज्यादा होगा,
0: ज्यादा होगा। हाँ,
1: उससे मैंने घाटा नहीं होगा। धान का भी है तो लोग कहते हैं, नहीं जान रहे तो, कि धान में ये मधुमक्खी से चूस लेता है तो हमारा नुकसान हो, खखरी हो गया, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। धान चूसक एक कीड़ा होता है,
0: कीड़ा होता है,
1: वो चूसता है, उससे खखरी होता है, ये मधुमक्खी से नहीं कुछ होता है। इससे अधिक से अधिक उसमें पुष्ट आएगा, दाना आएगा, ये होगा, इससे नुकसान नहीं होगा।
0: अच्छा, तो जब मधुमक्खी आप रखे हुए हैं बक्सा, ये आप जो भी सब्जी वगैरह जो लगाए हैं वहाँ आसपास बक्सा रखे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि कीटनाशी वगैरह का छिड़काव नहीं करते होंगे?
1: कीटनाशी की छिड़काव नहीं करते हैं हम। अभी ये 5 लीटर गाय के पेशाब और उसमें 1/2 किलो हरी मिर्चा और 1/2 किलो लहसुन और उसमें 2 किलो नीम के पताई और 1/2 किलो खैनी का डांटी,
0: अच्छा,
1: ये सब का मिश्रण करके और जिसे मिर्चा का हमने चटनी बना दिए, तो उसको उसी गाय का पेशाब में डाले और फिर उसको डंडा से चला दिए, फिर लहसुन का चटनी बनाए और उसको उसी में डाले, फिर उसको चला दिए, नीम का पताई का फिर उसी में डाल कर चला दिए, खैनी के डंठल का उसी में। अगर इस प्रकार से हम 6-7 दिन तक उसको चलाते रहें और मैंने शाम सुबह और उसको करते रहें, तो ये हमारा
0: बढ़िया
1: दवा हो जाता है,
0: मैंने कीटनाशक।
1: और ये किसान को या किसी भी आदमी का या नुकसान कुछ नहीं है, न मधुमक्खी का नुकसान है और उससे
0: काफी लाभ होता,
1: काफी लाभ होगा
0: जी।
1: सारा कीड़ा उससे मर जाएंगे। यही हम शुरू किए हैं, ये पहला बार इन साल से किए हैं।
0: हाँ, बहुत सुंदर,
1: इन साल से दवा का मैंने प्रयोग किया।
0: आपका जो जैविक कीटनाशी है, इसका महत्व अलग है।
1: हाँ, ये
0: हमारे किसान भाई को ये अपनाना चाहिए।
1: हाँ, अब हम कहेंगे कि किसान भाइयों, ये अगर एक बार ये दवा करके अपना घर में, हर किसान के यहाँ गाय है, जो किसान के यहाँ गाय है, वो आप करके देखे, किसी भी चीज में डाल के देखिए, ऐसा करने से आपका जरूर मर्ती हो जाता है, मर जाता है, कोई कीट नहीं लगेगा
0: जी, बिल्कुल,
1: और कोई हानि नहीं रहेगा।
0: नहीं जी
1: जी,
0: आप थे गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के
1: शिवनाथ
0: गोंदा गांव के एक

0: फल कृषक शिवनाथ कुशवाहा जी, जो वर्षों से मछली पालन और मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी भी इनकर बृहद पैमाने पर होती है और काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से मिलकर, वहाँ से जुड़कर ये प्रशिक्षण भी प्राप्त की है, तरह तरह की प्रशिक्षण भी आप ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ किसान भाई बहन, अब चूंकि हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम में अब बातें यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम से आ गया। नमस्कार।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम बातें करते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। किसान भाई बहन, पिछले 3 दिनों में कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला कांके रांची में 166.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जी हाँ, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है किसान भाई बहन। और पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो बेहतर रूप से बारिश हुई है। अब कुछ कुछ बातों पर ऐसे में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है जो हमें मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा में पलामू जिले के लिए जो प्राप्त हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, उसके अनुसार धान फसल की खेती हमारे जो भी किसान भाई कर रहे हैं, पानी जमा होने की वजह से जल्दी रोपी गई धान की फसल में शीथ ब्लाइट का संक्रमण हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे ग्रामीण बंधु 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 1 मिलीलीटर प्रोपीकोनाजोल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दें। किसान भाई बहन, मक्का की अगर बात की जाए तो उच्च आर्द्र स्थिति तथा तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने पर मक्का की फसल में पत्ती झुलसा रोग के प्रकोप देखे जा सकते हैं। नियंत्रण के लिए एजो एक्सीएस्ट्रोबिन साथ में मैंकोजेब 300 ग्राम प्रति एकड़ के दर से मिला करके आप छिड़काव करें। मक्के की फसल जहां भुट्टे में दाने लग रहे हैं उनकी रखवाली का समय अब आ चुका है। इसके लिए किसान भाई खेतों में खंभों के सहारे चमकीले फीता बांध दें। इस फीता पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक को देखकर पक्षी दूर भागते हैं। पौध संरक्षण की बात हम करें किसान बंधु, तो वर्तमान में लंबे समय तक गीली स्थिति धान मक्का और सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिसे क्विनोल्फॉस 25 EC या क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल का बना करके आप घोल का छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। सब्जियां की खेती तो बृहद पैमाने पर आप सभी करते हैं किसान भाई, तो खेत में जो भी अतिरिक्त पानी है उसे आप जरूर निकाल दीजिए। बारिश और उच्च आर्द्रता के कारण सब्जियों में झुलसा और रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वे खेत की नियमित निगरानी जरूर करें। यह देखा जाए कि ब्लाइट के लिए मैंकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर और रस चूसने वाले कीट के लिए इमिडाक्लोरपीट 17.8% SL 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव अगर आप देखें कीड़ों को तो कर सकते हैं। पिछले सप्ताह के दौरान बारिश और उच्च आर्द्रता की स्थिति के कारण युवा पौधों में मुरझाने की संभावना है। बिल्कुल किसान भाई, खेत से पानी आप जरूर निकाल दीजिए और 200 लीटर पानी में कार्बेक्सिन साथ में थीरम 400 ग्राम या मेटालॉक्सिकल 8% साथ में मैंकोजेब 64% WP 400 ग्राम के दर से और स्ट्रेप्टोसाइलिन 20 ग्राम मिलाकर उसमें प्रति एकड़ छिड़काव आप कर सकते हैं। फसल में पोटाश उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा भी आप डालिए। किसान बंधु, दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो अरहर में उकटा रोग के प्रकोप देखे जा रहे हैं जो अपनी वानस्पतिक अवस्था में अभी अरहर है। इसके बीच हमें अभी बचाव का कार्य करना चाहिए। इस हेतु रोग ग्रसित पौधों को आप उखाड़ करके फेंक दें, नहीं तो 1 से 2, 2 से 3 सभी पूरे जो फसल आप लगाए हुए हैं पूरी फसलों में ये रोग फैल सकते हैं। अगली बार बुआई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करिए, इसका यही एक उपाय है, और रोग रोधी किस्मों का चुनाव करिए। जी किसान भाई बहन, मुर्गी पालन हमारे बहुत से ग्रामीण बंधु करते हैं, तो हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पोल्ट्री कूड़े में चूना आप जरूर मिलाइए और 7 दिन के चूजों को RD का टीका आप जरूर दे दीजिए। कोक्सीडियोसिस को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाई बहन, ये बातें हो रही थी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची से प्राप्त मौसमी खेती परामर्श बुलेटिन पलामू जिले के लिए जो प्राप्त हुए जो पत्र, उस पे बातें हो रही थी। किसान भाई बहन, और अब कुछ और जानकारी की बातें। मृदा में जो क्षरण की स्थिति जो बनी हुई है, उसे हम किस प्रकार रोकथाम करें जिससे कि मृदा में जल धारण क्षमता जो है वो अधिक से अधिक बन सके, हमारी मृदा स्वस्थ हो और हम पुष्ट अनाज प्राप्त कर सकें, इस संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
0: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
1: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि अब जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को, जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं, और आज उसी पर हमको विशेष चर्चा करनी है।
0: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
1: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है।
0: जी जी।
1: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें।
0: अच्छा।
1: स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
0: हाँ।
1: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
0: स्लोप में नहीं करें,
1: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
0: अच्छा।
1: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
0: अच्छा।
1: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
0: अच्छा,
1: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
0: अच्छा,
1: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
0: फिर दूसरे लाइन में
1: आप फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उड़द मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
0: जी जी।
1: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
0: अच्छा।
1: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
0: अच्छा।
1: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
0: ये सब रोकेंगे।
1: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं। ऐसे करके भी इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो है वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
0: अच्छा।
1: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा तो हो जाएगा। इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
0: डोभा का निर्माण करवा दीजिए।
1: हाँ, डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में।
0: हाँ।
1: तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहां पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
0: अच्छा।
1: और डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
0: इतना काफी है।
1: इतना काफी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
0: और इसके अंदर जाएगा।
1: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल भी सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन।
0: हाँ।
1: तीन तरह की जमीन यहाँ पे है।
0: हाँ।
1: तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाएं तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
0: अच्छा।
1: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
0: साधन कितना,
1: कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
0: अच्छा।
1: यदि पानी का आने का साधन वहाँ पे है तो जो है वहाँ तालाब का निर्माण करे।
0: अच्छा।
1: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता।
0: हाँ, सूख जाता है।
1: हाँ, तो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे। जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
0: जी।
1: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो और उसकी जब खुदाई कराए जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, उसकी जब भी खुदाई कराए तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे।
0: अच्छा।
1: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है।
0: हाँ, इसके चलते जो है,
1: वो जो है पानी आ नहीं पाता
0: नहीं।
1: है तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है मिट्टी को डाले।
0: अच्छा।
1: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
2: अच्छा।
1: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
2: अच्छा।
1: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहाँ पर मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आ जाती है। उसके पीछे कारण है कि जहाँ से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
2: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं।
1: हाँ, बांध पर वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको
2: कटाव
1: को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2।
2: अच्छा।
1: जैसे कि 1 फीट गहरा करे।
2: हाँ।
1: तो 1 फीट जो है
2: चौड़ा
1: करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे,
2: सीढ़ी नुमा
1: तालाब बनाना चाहिए। डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्लोप जब ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा मिट्टी कटाव उतना कम होगा।
2: हाँ,
1: और सीधा बिल्कुल हम काटेंगे तो वो हमारे मिट्टी जो है कोलैप्स होने का, तालाब जो है वो
2: खतरा,
1: हाँ, भंसने का खतरा रहता है। तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में, दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
2: बिल्कुल।
1: इसके पीछे कारण यही होता कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
2: तो ये तो कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो क्षीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खातों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी, आखिर क्या करें किसान भाई?
1: देखिए, आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे।
2: जी,
1: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफी नुकसान पहुँचा रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें,
2: तो ज्यादा
1: या जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो है, जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है 1 एकड़ के लिए।
2: जी।
1: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं
2: तो उससे
1: नष्ट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता है,
2: विकास होता है।
1: तो वो जो है बैक्टीरिया मर गए हैं, और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें।
2: जी। और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने

0: के जी कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और कम कर दीजिए, फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए, ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है
1: जी जी,
0: कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा मैंने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का मैंने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के मैंने खाद की जरूरत नहीं है। 10 केजी से 1 एकड़ की आप खाद का काम हो सकता है 10 केजी गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: लेकिन तकनीकियां अपना,
0: हाँ, किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है, तो कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती है, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बना करके दिखाते हैं किसानों को और किसान के खेतों में भी हम लोग इसको करते हैं।
1: अब बात उठता है कि हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, तो कई तकनीकियां खेतों खलिहानों में ऐसे उतारी गई हैं जिनमें आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाता है?
0: ये बहुत कारगर है, ये जो है टपक सिंचाई जो है झारखंड सरकार इस पे जो है 90% सब्सिडी दे रही है और आज से नहीं कम से कम जो है 12-13 साल से जो है इस पे सब्सिडी आ रहा है और किसान इसको जो है अपने खेत में जो है इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो आप कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ आत्मा एक विभाग है, कृषि विभाग का ही पार्ट एक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको बूंद बूंद सिंचाई का, टपक सिंचाई का जो है आपको मिल जाएगा। एक फार्म होता है उसको भरना होता है, उसके साथ आधार कार्ड
1: जी जी
0: और जो है अपना जमीन का पेपर जो है जिस जमीन में आपको जो है लगाना है। इससे बहुत तरह के फायदे हैं, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पानी की बचत है
1: जी,
0: 60-70% पानी की बचत आपकी हो जाती है। किसान ऐसे तमाम हम लोगों को मिलते हैं कि वो जो है पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा, इससे कौन कौन सी खेती की जा सकती है, जैसे अनाज वाली फसलें हो गई?
0: हाँ, इससे जो है धान को छोड़ करके सारी फसल की जा सकती है, गेहूं भी।
1: वाह।
0: हाँ, इससे जो है सिर्फ धान ही एक ऐसी फसल है जिसमें ये कारगर नहीं है।
1: हाँ, हाँ।
0: क्योंकि धान में हमेशा पानी लगा हुआ रहना है
1: जी,
0: और कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें जो है पानी हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए
1: जी,
0: इसलिए जो है ये हर फसल के लिए उपयोगी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है किसी तरह का श्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आप सतही सिंचाई करते हैं तो आप पंप से कर रहे हो या बोरिंग से कर रहे हो, तालाब से जैसे भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 लेबर जो है आपके खेत में लगे रहते हैं। यदि 1 एकड़ सिंचाई करना है तो आपको 4 घंटे लगेंगे, इसमें क्या है कि आपको 1 एकड़ सिंचाई करना है तो 15-20 मिनट लगेगा। एक बार आप जो है मोटर अपना स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करके जो है 15-20 मिनट जो है आप खेत में घूमिए, आपके खेत की सिंचाई हो गई बूंद बूंद करके जो है, जहां पर पौधा है वहीं पे ये पानी गिरेगा, दूसरे जगह नहीं गिरेगा, जिसके चलते जो है क्या होता है कि बहुत सारे खर पतवार खेतों में आ जाते हैं, तो वो खर पतवार भी नहीं आएंगे क्योंकि खर पतवार को पानी मिल ही नहीं रहा है। वो आप देखेंगे कि 3-4 साल के अंदर जो है आपके खर पतवार भी
1: नष्ट हो,
0: धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इससे खाद देने की भी सुविधा है, आप जो है उसका एक फर्टिगेशन सिस्टम होता है, वहां पर आप खाद घोल करके आप डाल सकते हैं और पानी के साथ साथ जो है खाद भी जो है आपको पहुंच जाएगा, और जिसके चलते जो है आपको जो है खाद की जो है 40% तक बचत हो जाती है
1: जी। और इस भेंट वार्ता के अंत में और भी ऐसी कोई छूटी हुई महत्वपूर्ण बातें जो मृदा क्षरण से संबंधित हो?
0: मृदा क्षरण से जो है किसान को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितना पानी पर ध्यान देते हैं कि पानी को बचाना है, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको मृदा संरक्षण में करना होगा। मृदा संरक्षण जो है, यदि मृदा रहेगी, मिट्टी हमारी रहेगी, तभी हमारी खेती होगी। यदि
1: किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे मृदा

क्षरण को हम कैसे संरक्षित करें और जल संरक्षण पर की गई बातचीत विशेषज्ञ विनोद कुमार पांडे से। और कार्यक्रम में अब हमारा समय हो चला है विदा लेने का, इसलिए बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम ग्रामीण सभा से आज्ञा, नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
1: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
0: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
2: एनएसबी कराने।
0: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
0: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
1: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
0: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
2: एनएसबी कराने।
0: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विशेष कोर्ट ने तय किए आरोप, नवंबर से शुरू होगा ट्रायल, हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों की एमएसपी वृद्धि को दी मंजूरी, बिजली ग्रिड मजबूत करने के लिए पीएम धारा योजना को भी मिली हरी झंडी। ईडी ने 734 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के सात ठिकानों पर की छापेमारी, कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त। रामगढ़ में भाजपा ने कोयला चोरी पर राज्य सरकार को घेरा, रांची में मतदाता सूची के मुद्दे पर झामुमो का प्रदर्शन, और कोडरमा के मरकच्चों में मध्याह्न भोजन खाने से 48 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में इलाज के बाद स्थिति सामान्य। और अब समाचार विस्तार से। रांची की विशेष अदालत ने बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठित कर दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल के लिए नवंबर की तिथियां तय की। इधर याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। श्री सोरेन के अधिवक्ता संजीव सहाय ने कहा कि ट्रायल के दौरान इन आरोपों के खिलाफ कानूनी मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा।
1: हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर, जिसमें हमने सेक्शन 44 सब सेक्शन डी को चैलेंज किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनरीजनेबल है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है। आज स्पेशल कोर्ट में ऑनरेबल जज ने एक्यूज नंबर 2 जो थी उनके खिलाफ ऐसा चार्ज फ्रेम किया गया है, और अब ऐसा 30 नवम्बर को ये मैटर रख दिया गया है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना और राज्यों में बिजली पारेषण मजबूत करने के लिए पीएम धारा योजना को भी हरी झंडी दी है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची टीम ने आज 734 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले के मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी की। वित्तीय लेन देन और टैक्स चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड्स और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमशेदपुर में कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल और उनके अकाउंटेंट के यहां तलाशी अब भी जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ आदित्य प्रसाद साहू

0: पुणे रामगढ़ में राज्य सरकार पर कोयला चोरी और डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने खनन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी की मांग की ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके।
1: झारखंड राज्य में एमएमडीआर कानून का लोग गलत तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। अब जनता को गुमराह करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता आज के दिन में समझी हुई है। जनता जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता के लिए अच्छा काम होगा वही काम होगा।
0: रांची में आज झामुमो कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रांची विश्वविद्यालय फुटबॉल ग्राउंड से निकले इस जुलूस के दौरान सांसद महुआ माझी ने मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। रांची नगर निगम ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर विशेष निर्देश जारी किया है। इस दिन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूचड़खाने और मांस मछली व मुर्गे की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
2: राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी बाजारों तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने राज्य के वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। बिना गारंटी के मिलने वाले इस ऋण ने प्रदेश के लाखों हुनरमंद युवाओं और लघु उद्यमियों की पूंजी की चिंता को दूर कर दिया है। देश के इन छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। फिर भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतार रहा है झारखंड का बोकारो जिला, जहां बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करीब 5 लाख लोगों को मुद्रा लोन देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। लाभुकों की प्रतिक्रिया है कि अब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।
4: मुद्रा लोन के बारे में पता चला, जैसे हम मुद्रा लोन लिए और एक आरओ पानी का प्लांट बैठाए हैं, आज इसी से हमारा पूरा परिवार का भरण पोषण होता है एवं 4-5 लड़के को रोजगार भी दिए हुए हैं।
5: हमारी दुकान बहुत पुरानी है, लेकिन कम पूंजी होने के कारण हम अपने कार्यों में विस्तार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से मुझे मुद्रा लोन मिला मैं कई स्कूलों को आपूर्ति कर पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन हम लोगों के साथ बहुत ही सार्थक हो सका है।
2: बोकारो के इन सफल उदाहरणों की तरह ही आज पूरे झारखंड में हजारों उद्यमी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहे हैं। जब जमीनी स्तर पर छोटे कारोबार मजबूत होते हैं तो पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड में मध्याह्न भोजन करने के बाद एक स्कूल के 48 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। आलू सोयाबीन की सब्जी और भात खाने के बाद बच्चों ने उल्टी व पेट दर्द की शिकायत की थी। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। आकाशवाणी रांची के उप महानिदेशक सह केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री हेम्ब्रम ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान

0: जमशेदपुर और हजारीबाग में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। आज रांची केंद्र में आयोजित विदाई समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सुखी भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता की संशोधित तिथियां जारी कर दी गई हैं। इसके तहत स्कूली खिलाड़ियों के ट्रायल और प्रतियोगिताएं 1 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होंगी, जिसमें विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विशेष कोर्ट ने तय किए आरोप, नवंबर से शुरू होगा ट्रायल, हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों की एमएसपी वृद्धि को दी मंजूरी, बिजली ग्रिड मजबूत करने के लिए पीएम धारा योजना को भी मिली हरी झंडी। ईडी ने 734 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ ठिकानों पर की छापेमारी, कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड्स और दस्तावेज जब्त। रामगढ़ में भाजपा ने कोयला चोरी पर राज्य सरकार को घेरा, रांची में मतदाता सूची के मुद्दे पर झामुमो का प्रदर्शन, और कोडरमा के मरकच्चों में मध्याह्न भोजन खाने से 48 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में इलाज के बाद स्थिति सामान्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
2: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
2: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
2: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
2: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
2: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
2: और लड़के की 21 वर्ष है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रस्तुत है जिले में आज कर

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए। जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वो खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उन्हें पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सरकार का संरक्षण मिलने की आशंका होती है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की।
2: अपराधियों का जब मनोबल बढ़ता है तो इस तरह के अपराध में वृद्धि हो, तो पुलिस प्रशासन ऐसे चीजों को जब छद्म रूप से प्रश्रय देती है तो अपराध बढ़ता है। यह छद्म प्रश्रय देने के कारण इस तरह के घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जिसके कारण बैंक डकैती, अपराधी यदि बैंक में सोना और कैश लूट कर रहे हैं तो इतने सारे जिला में पुलिस क्या कर रही है? ट्रैफिक के पुलिस है, मोबाइल वैन है, पीसीआर है, स्पेशल पीसीआर कंट्रोल के लिए है सारे जगह में। एक जमाना था जब वायरलेस नेटवर्क नहीं था, आज तो तीन तीन तरह का डेटा सिस्टम काम कर रहा है थाना के साथ। फिर इस तरह के अपराध यहाँ बढ़ने के पीछे कारण क्या है? और उसके पीछे एक ही कारण है कि उनको प्रश्रय दिया जाए।
1: सड़क दुर्घटना या आपात स्थिति में अब अपनों तक सूचना पहुँचाना आसान हो सकता है। जमशेदपुर की फ्रेंड्स एलाइड सर्विस की पहल मदद साथी ने इमरजेंसी QR की शुरुआत की है। वाहन पर लगे QR को स्कैन करने पर व्यक्ति की सहमति से नाम, परिवार के संपर्क नंबर, पता

0: और जरूरी मेडिकल जानकारी मिल सकती है। संस्था के निदेशक नीतीश कुमार सिंह के मुताबिक इसका उद्देश्य हादसे की स्थिति में घायल की पहचान और परिजनों से संपर्क की प्रक्रिया को तेज करना है।
1: इमरजेंसी की वार्ड है जो अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट किसी तरह का सड़क दुर्घटना या इमरजेंसी केसेस में फंसते हैं, ये की वार्ड अगर आपके गाड़ी में रहता है तो इससे स्कैन करके तुरंत आपके परिवार तक, फैमिली तक आपातकाल में इमरजेंसी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। ये की वार्ड है, ये लाइफ सेविंग की वार्ड है। एक हमारा मुहिम है जो लोगों को दुर्घटना के समय जान बचाने का।
0: जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसएसपी एहतेशाम वकारिब देर रात खुद बाइक से शहर की सड़कों पर निकले और कई चौक चौराहों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर इलाके की स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देर रात तक सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह जमावड़ा लगाने वालों को चेतावनी दी गई। पुलिस के इस अभियान से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ने की उम्मीद।
2: आज फ्लैग मार्च निकाला गया है सभी टैंगो पेट्रोल और पीसीआर वाहन के साथ। मैं स्वयं निकला हूँ, साथ में डीएसपी पीसीआर और सार्जेंट ट्रैफिक डीएसपी सब निकले हैं। और अलग अलग क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ये पूरे जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, मैं ट्रैफिक प्लान के अनुसार हम लोग बैठ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कार वीक वीक में हम लोग निकाल रहे हैं। मैं निकला हूँ, कल थाना की टीम निकलेगी, एक दिन डीएसपी, ऐसे करके अलग अलग प्लान बनाया गया है। और हम लोग का उद्देश्य है शहर में सभी पब्लिक से मिले, उनकी राय जाने और अच्छी पुलिसिंग दे पाए। हमारा अपील है कि पब्लिक न्यूसेंस ना करे, अपना जो फैमिली वक्त है फैमिली के साथ बिताए और हम लोग इसके अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई करते रहे।
0: जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पूजा पंडालों के निर्माण के साथ सजावट और विद्युत व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूजा समितियां आयोजन की तैयारी में जुटी हैं। शहर में पूजा को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। आज के एक रंग में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्म लकी के कुछ गाने।

श्रोताओं, एक रंग कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्म लकी के कुछ गाने। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, सोनू निगम, लता मंगेशकर, अदनान सामी, अलका याग्निक, सोनू निगम। और ये अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसमें आवाज़ दी थी सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी, इसके तहत आइए सुनते हैं डॉक्टर अब्दुल जफर से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है दांतों के

0: बढ़ गया है और ऐसे में दांतों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी दांतों की समस्या से ग्रसित है और बुजुर्ग साथी भी दांतों की बीमारियों से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में कि दांतों की कौन कौन सी सामान्य बीमारियां होती हैं जिसका सही समय रहते हम पहचान कर लें और उसका इलाज हम शुरू कर दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल्ला जफर। जफर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जफर साहब, आजकल देखा जाए तो खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, फास्ट फूड का सेवन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में दांतों को ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है?
1: अगर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा का सेवन कर रहे हैं, रेगुलर सेवन कर रहे हैं, तो दांतों में उसका इफ़ेक्ट हमारे जो मसूड़े हैं उस पर ज़्यादा कर रहा है। मसूड़े फूल जाते हैं या अच्छे से हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे धीरे धीरे दांत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और दांत हिलने लगते हैं, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है।
0: तो दांतों में सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और उसका हम पहचान कैसे करें, लक्षण क्या है?
1: देखिए, हम लोग कुछ सामान्य बीमारियां आराम से हम लोग घर पे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो है सामान्य बीमारी में आता है वो हमारे गम ब्लीडिंग का आता है, मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून जब आता है तो अक्सर हम लोग जब ब्रश करते हैं तब समझ में आता है कि मसूड़े से खून आ रहा है, या अगर कभी कभी सीवियर केस में हम लोग जब सोए रहते हैं तो सुबह उठते हैं तो लगता है कि मुंह में बहुत ज़्यादा खून आ गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक हमने सुना होगा आम शब्दों में पायरिया हो गया है, तो पायरिया का स्टार्टिंग जो लक्षण है वो जिंजिवाइटिस कहलाता है। जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पार्टिकल जो है कुछ रह जाता है हमारे मसूड़ों के बीच में, मसूड़ों दांत के बीच में, और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अच्छे से अगर ब्रश कर सकें, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई करवा लें, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो केस, जिंजिवाइटिस केस, आगे बढ़ के पीरियोडोंटाइटिस केस में चला जाता है, मतलब प्रॉपर पायरिया हो जाता है वो। उस केस में क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों और दांतों के बीच में गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि दांत हिलने लगते हैं, और फिर उस वो केस इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितने डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर एक बार 6 महीने में या साल भर के बीच के अंदर आप अपने डेंटिस्ट, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और एक और कारण है कि हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि मसूड़े छिल जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड आ सकता है। और ब्लीडिंग गम के एक और कारण है कि हम कुछ दवाई रेगुलर ले रहे हैं, जैसे एनसेट्स हैं या एंटीकोगुलेंट, मतलब खून को जमने की दवा लेते हैं, या एंटीप्लेटलेट कुछ दवाई लेते हैं, तो वो भी एक कारण है। एक और मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है, उसको इंग्लिश में स्कर्वी बोला जाता है। तो अगर वो सब है, ये सब लक्षण रहेंगे तो हमारे ब्लीडिंग गम होने के चांसेस हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है हमारे दांतों की वो है डेंटल सेंसिटिविटी की, कि हमारे दांत में बहुत झनझनाहट होता है, हम कुछ भी ठंडा लेते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके भी कुछ कुछ कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि दांतों का लेयर बाय लेयर 4 लेयर होता है, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो अगर वो शेड हो गया, अगर वो हट गया, तो उसके बीच का लेयर जो है वो डेंटिन कहलाता है। अगर डेंटिन निकल आया किसी कारण से तो उस केस में हमें ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, और ठंडा पानी पिएंगे तो हमें ठंडापन का महसूस बहुत ज़्यादा होगा, हवा जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो भी, आइसक्रीम खाएंगे तो भी। तो वैसे केस में क्या होता है, सबसे ऊपरी लेयर का बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रात में दांत कड़कड़ाते हैं, जिसके वजह से दांत जो है घिस जाते हैं, तो ऊपरी लेयर जो इनेमल होता है वो हटने के बाद उसके बीच का लेयर जो डेंटिन होता है वो आ जाता है, और डेंटिन जब एक्सपोज हो जाता है तो कुछ भी ठंडा पीजिएगा, ठंडा पानी हो, ठंडा आइसक्रीम हो, तो आपको ठंडा लगेगा। उसके बाद एक कारण है कि आपके मसूड़े जो है नीचे जा रहे हैं, वो भी एक कारण है कि आप दतमन कर रहे हैं तो उसमें भी ज़ोर ज़ोर से आप दतमन कर रहे हैं। कुछ लोग खैनी खाते हैं तो उस केस में भी मसूड़े वहाँ पे जल जाते हैं खैनी खाते खाते, तो वो गम रिसेशन कहलाता है। तो वैसे केस में भी आपको ठंडा में ठंडा लगेगा, और कभी कभी दांत हमारे उम्र के हिसाब से घिसने लगते हैं, तो वैसे कैसे

0: में भी आपको ठंडा का महसूस होगा। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपको लगता है कि हमें ठंडापन महसूस हो रहा है, तो फौरन आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार दिखलाएं। हर 6 महीने पे नहीं तो 1 साल के बीच में भीतर में आप ज़रूर जाएं।
1: जी, हमारे दांत स्वस्थ रहें, मोतियों जैसे चमकते रहें, तो कौन कौन सी सावधानियां हम अपने जीवन में रखें ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, चमकीले रहें। और देखिए, यदि आपके दांत स्वस्थ हैं, मोतियों जैसे चमकदार हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी दांतें खूबसूरती बिखेरती हैं। तो हर कोई चाहता है कि हमारे दांत स्वस्थ हैं, चमकीले हों, और दांत से आपके व्यक्तित्व पर काफ़ी एक प्रभाव पड़ता है।
0: जी जी, आज के डेट में, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है कॉस्मेटिक्स के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, और चेहरे में सबसे जो मुख्य चीज़ जो आपको रोल अदा करती है वो है आपके दांत। अगर दांत आपके स्वस्थ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मतलब आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है मतलब आपका फेस अच्छा है, तो सबसे मुख्य कारण है आज की डेट में दांतों का सही होना, चमकीले होना। हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं या फिर चाय कॉफ़ी वगैरह जो लेते हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो उससे हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो वैसे केस में हमें थोड़ा सा धीरे धीरे कम लेना है और उसकी सफाई का ध्यान रखना है। और अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो वैसे केस में भी हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, और कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी केस में भी ऐसा होता है कि दांत पीले पड़ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी, कभी ज़्यादा आपके दांत डिसकलर हो गए हैं तो एक ब्लीचिंग एक ऑप्शन आता है, जैसे हम लोग चेहरे का ब्लीचिंग कराते हैं, इस तरह का दांत का एक ओकेजनली एक ब्लीच आप करा सकते हैं ताकि आपके दांत बिल्कुल चमकीले दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। और स्केलिंग पॉलिशिंग होती है, वो उससे भी आप सफाई, मतलब सफाई रखेंगे तो आपके दांत चमकीले रहेंगे। और दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका भी इलाज है, वो भी आज के जनरेशन में सारे अक्सर लोग, पहले कहा जाता था कि सिर्फ बच्चों लोग का दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसको ठीक कराया जाता, लेकिन अभी मिड जनरेशन जितने लोग हैं वो सब अपने दांत सीधे करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके स्माइल अच्छी दिख सके, आपके दांत अच्छे जब सिमेट्रिकल वे में रहेंगे तो आपका स्माइल अच्छा दिखेगा, आपका फेस अच्छा दिखेगा। तो वो ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाता है, तो उसके थ्रू आप लोग अपने दांत, टेढ़े मेढ़े दांत थे उसको सीधे करके, जितने माल अलाइन दांत हैं उसको सीधे करके, और दांतों का सफाई करवा के, स्केलिंग पॉलिशिंग करा के आप दांत चमकीले रख सकते हैं।
1: छोटे छोटे बच्चे हमारे
0: जी
1: टॉफ़ी का सेवन करते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और फास्ट फूड का सेवन करते हैं, और ऐसे में दांतों को नुकसान पहुँचाता है। तो माता पिताओं को क्या कहेंगे कि अपने बच्चे की दांतों का प्रॉपर ध्यान दें?
0: देखिए, आज के जनरेशन में माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में केमिकल के पदार्थ हम लोग सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। लाइक अगर चॉकलेट भी आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला करके बनाया जाता है। चॉकलेट में शुगर ज़्यादा होता है, शुगर का इंटेक कुछ भी कीजिएगा तो वो उससे आपका बैक्टीरिया होने का चांस बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करता है जिससे हमारे दांतों का डीमिनरलाइजेशन कराता है। ये सिंपल एक सीक्वेंस है जो आपको समझना चाहिए। तो वैसे केस में बच्चों को, बच्चों के दांत और उनके ओरल कैविटी का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बच्चों को चॉकलेट अगर आप खिला रहे हैं तो चॉकलेट खिलाने के बाद उनके दांत ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं पे कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। तो दांतों की सफाई करवाइए, और दांतों के कम से कम सुबह और शाम में ब्रश करवाइए, और सोने से पहले ज़रूर उसके दांतों का चेक करके उन पे ध्यान दीजिए कि अगर वो बच्चा चॉकलेट खा के सो तो नहीं गया है, तो वो स्टक हो जाएगा जब दांत में, तो वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्म करेगा, कैविटी फॉर्म करेगा तो वो दांत सड़ जाएगा। और अगर दूध के दांत वक्त से पहले अगर टूट जाता है तो जो नीचे वाले जो दांत हैं, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो अपने सही टाइम पे जब आएंगे तो जहाँ उनको जगह लगेगा वहाँ पे आने लगेंगे। तो इसीलिए आज के जनरेशन में दांत बहुत टेढ़े मेढ़े दिखने लगे हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आप उनके फ्यूचर का भी ध्यान रख रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला जफर साहब, दंत रोग विशेषज्ञ, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की कि अपने दांतों का किस प्रकार ध्यान रखें, और खासकर छोटे बच्चे जो चॉकलेट टॉफ़ी का लगातार सेवन करते हैं, यदि उनके माता पिता इस हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो बच्चे के दांत स्वस्थ रहेंगे, चमकीले रहेंगे, और वो आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू।
2: स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के तहत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर

अब्दुल जफर से ली गई भेंट वार्ता, विषय था दांतों की आम बीमारियां और उनकी देखभाल। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। यह आकाशवाणी रांची की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे जान की कसम फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सड़क और आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल को, फिल्म थी आपकी यादें। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

जुनून फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कविता पौडवाल को, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तेलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट।

0: स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना

0: करना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
2: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
3: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
3: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात

0: Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy, and critical technologies during their telephonic conversation. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5,548 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गयी। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार के मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपए फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रुपए फी क्विंटल, जो कि कीमत में 136 रुपए फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रुपए फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत MSP को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्र करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के निफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसमें टैक्स भी शामिल है।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: दिल्ली में फिलहाल तकरीबन 71 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ITMS का मकसद सड़कों की मौजूदा गुंजाइश का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस निजाम के जरिए ट्रैफिक इंतजामिया को ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक मुतहरिक अंदाज में बरवक्त इकदामात करने में मदद मिलेगी। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
2: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: मरकज ने कीमत इमदादी स्कीम PSS के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम से कम इमदादी कीमत MSP पर 5,547.99 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजारत ज़राअत ने कहा है कि यह फैसला किसानों को मार्केट की कीमतों में कमी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी पैदावार के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फैसले से मुल्क भर के लाखों किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले से मुतालिक काबीना के फैसले का भी खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सदसालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। UPSC के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद मनाने के लिए गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर से साल भर जारी रहने वाली सदसालाना तकरीबात का आगाज किया गया था, जिसके इख्तिताम पर कल इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। UPSC का क़याम साल 1926 में अमल में आया था। वज़ीर आज़म मोदी इस प्रोग्राम में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। नीज एक किताब का इजरा भी करेंगे जिसका उन्वान है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया। ये प्रोग्राम 2 रोजा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका इनेकाद UPSC की जानिब से आज और कल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज शाम अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए-कार लाया जा रहा है।
3: आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी पहल है जिसका मकसद अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना, बरामदात पर इन्हिसार को कम करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पहल का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था, ताकि मुल्क को हर शोबे में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पैदावार से मुंसलिक तरगीबात, ज़रई बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड, मेक इन इंडिया और बहुत छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के लिए तआवुन जैसे इकदामात का मकसद भारत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। 79वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद इन्हेसारी को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है, और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है, और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी से गुफ्तगू में रिटायर्ड कॉमोडोर

0: श्रीकांत के स्नूर ने बताया कि भारत ने दिफा के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है और वो दिफाई साजो सामान के बड़े दरामदकार से एक उभरते हुए बरामदकार मुल्क के तौर पर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की खातिर मईशत को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा बासलाहियत और मुस्तहकम बनाने का एक तवील मुद्दती विजन है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते IGC और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और हीरोइन जब्त की गई। ये कश्ती भारत के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन की मिसाल कायम करने वाली 16 रोजा तवील कार्रवाई के दौरान एक ईरानी कश्ती भी कब्जे में ली गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2029 के आखिर तक पंजाब को मुनशियात से पाक कर दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और शिमाल मशरकी रियासतों में इंतहा पसंदी का खात्मा किया है। अब हुकूमत की तवज्जो पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने पर मरकूज होगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: पंजाब के शहीदों को जिनमें शहीद भगत सिंह और उधम सिंह भी शामिल हैं खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पंजाब कभी अपनी बहादुरी, ज़राअत और खुशहाली के लिए मशहूर था लेकिन अब उसे मुनशियात के बढ़ते हुए मसले का सामना है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिले के खान साहिब पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ गुरवत कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा के हलाकत के साथ ही लश्कर ए तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे NSD ने अंग्रेजी जबान में आर्जी बुनियाद पर न्यूज एडिटर्स और न्यूज रीडर्स की खिदमात हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए www.newsonair.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना ने दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: इस नए दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। सो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

0: कभी तो हंसाए।
1: ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही

0: पोशीदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में ऋषिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने ऋषिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल फिल्म अनाड़ी को, 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा, 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा, और 1999 में ऋषिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006, इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन हुआ।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कभी कभी किसी के चले जाने से सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं होता, हमारे भीतर बसा हुआ एक पूरा संसार जैसे अचानक खामोश हो जाता है, जिसे अपना समझकर जीवन की सबसे खूबसूरत उम्मीदें सौंप दी थी, वही जब बिना पीछे देखे चला जाए तो सवाल सिर्फ उसके जाने का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि उसके साथ हम अपने भीतर का कितना कुछ खो आए हैं।

यादें इतनी आसानी से कहां जाती हैं? कभी उसकी कही हुई कोई बात अचानक कानों में पड़ती है, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिनों की आहट मिलती है। दिल एक पल को सोचता है, शायद वह लौट आए, शायद बीती

की बातों का कोई अर्थ अब भी बाकी हो? शायद इसी कारण आज भी उसकी आंखें किसी लौटते हुए कदम की आहट नहीं, बल्कि उस बीते हुए प्रेम की कोई आखिरी निशानी तलाशती है। हाँ, हर रोज।

0: चेंग यू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई, वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
1: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
0: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर ने 3 में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए। लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़ के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
0: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
1: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
0: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गयी। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
1: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेन्स टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर हैं। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
1: और अब बारिश से पक टाकरों की, पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
1: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भाजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला टीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं। दोनों इसके बाद रेपचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्ति ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, 3रे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई

0: कर पाई। किनों में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
1: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
0: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
1: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय सिनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
2: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
3: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
0: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी नगमे। आइए सुनें शेष नगमे।

रजनीगंधा कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए वे फिल्में हैं दो बदन, हमसाया, आया सावन झूमके, मेरा नाम जोकर, लोफर, समाधि और मेरे जीवन साथी। आवाज़ थी आशा भोसले की। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर

0: इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said The MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
3: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the union cabinet today also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said, the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for Rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including the ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation, 526 kilograms of metavitamine and heroin was seized from the boat, which was within India's exclusive economic zone. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the three-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted the highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।